कुरान का 16वां सूरा है, उसको उलट दीजिए 61, 16, 6 और 1 इधर कर दीजिए, 61वीं आयत। ला युआखिदुल्लाह अन्नासा बेदुल्महिम, अगर इंसान के क्राइम की वजह से, बहुत गौर कीजिए और ये ढीला देने वाली, इंसान ज़रा गौर करे तो परेशान हो जाता, अगर इंसान के गुनाह का बदला खुदा ले इस दुनिया में सिवाय जानवर के कुछ बाकी नहीं रहे। समझ रहे हैं कि नहीं आप, आयत कितना झिंझोड़ रही है इंसान को। अब जाकर के घर में ये आयत को रेफर कीजिए आप, ला युआखिदुल्लाह अन्नासा बिदुल्महिम मा तरका फीहा इल्ला दाब्बा। हदीस सुनाऊंगा एक, मैं भी साथ हूँ, आप ना समझे कि मैं बैठा हूँ कुछ ऐसा हो फरिश्ता ऊपर से आया हूँ, हम सब गुनहगार। अगर एक दूसरे के गुनाह मालूम हो जाएं, मैयतें दफन ना हो। रिवायतों में हैं कि अगर एक दूसरे के गुनाह जाहिर हो जाएं, तो कोई मैयत दफन ना हो। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, अल्लाह छुपाता रहता है, इसीलिए इंसान दफन भी होता है, खुशियाँ भी होती हैं, मजलिसें भी होती हैं, सब होता है, सब बैठते हैं इज्तिमा। इससे एक बात का नतीजा निकलता है कि हम लोग कभी किसी की बुराइयों में घुसना नहीं है, अच्छाइयों को देखना है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये आयत ये कह रही है कि अगर अल्लाह बदला लेना चाहे इंसानों का, कितने क्राइम, आप सोचिए इस वक्त हम बैठे हुए हैं बॉम्बे में, कितने क्राइम, रेपिंग भी हो रही है, गंदगी भी हो रही है, कत्ल वगारत भी हो रहा है, हड़पना भी हो रहा है, किसी का माल भी खाया जा रहा है, सारे दुनिया को सामने रखी आने वाहिद में एवरी सेकंड जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो जाहिर हैं वो तो ख़तरनाक हैं। जैसे फ़लस्तीन जल रहा है, यमन की वो आलत है, और आप सीरिया की अच्छी खूबसूरत कंट्री को बर्बाद कर दिया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक ऊँटनी, हज़रत सालेह का किस्सा मालूम है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, लोगों ने कहा कि हम वी वॉन्ट टू नो तुम कैसे पैगंबर, मौजूदा लो कैसा मौजूदा चाहिए, पहाड़ी से ऊँटनी को निकाल दो। हज़रत सालेह ने कहा दुआ की साथ जिंदा ऊँटनी बाहर निकली, कि इसको हाथ मत लगाओ, इसको खाने दो पीने दो, इसके तुम्हारे खेतों में चलने दो, इसका हक है, तुम इनको हाथ मत लगो। लगन उन लोगों ने उस ऊँटनी के साथ जुल्म किया। अल्लाह अकबर। मैं कभी सोचिए हम लोग गुनाहों से कोशिश करें हम लोग जितना हो सके बचें, इसलिए कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंस, गुनाहों का जो असर है वो ख़तरनाक है। हम ये समझ रहे हैं इस वक्त मैंने किया, इस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे, नया जिस वक्त किया उस वक्त से शुरू हो गया। जिस तरह से एक जहर खाने के बाद, एक गलत डाइट के बाद जिस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसी तरह से गुनाह करने के बाद फौरन उसके असरात शुरू हो गए। आई एम नॉट रियलाइजिंग, ये मेरी बेवकूफ़ी है, वो इल्म के ना होने की वजह से, जहालत की वजह से, जिस वक्त ही गुनाह हुआ उस वक्त ही उसका रिएक्शन शुरू हो गया। فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। इधर ऊँटनी को उन्होंने, ऊँटनी तो ऊँटनी जानवर भाई, एक जानवर है, शी केमल जिसको कहते हैं, एक ऊँटनी थी, उसको उन्होंने जुल्म से मारा था, मगर उसके एवज़ में पूरी कौम को खुदा ने अजाब नाजिल किया। एक ऊँटनी के एवज़ में खुदा अजाब नाजिल कर रहा है जी, गुजरात में इंसानों के साथ खेला जाए, क्या अजाब नाजिल नहीं करेगा खुदा? ख्वाब की बात, अजाब शुरू हो चुका है देखने वाले के लिए जो मोमिन। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। कोर्ट आपने बना लीजिए, आपके जजेस बना लीजिए, आप फैसले कर लीजिए, मगर अल्लाह का जो फैसला है वो हो चुका है। वो फैसला जब अल्लाह का हो चुका है, जो अल्लाह चाहता है वही होगा, तुम्हारा चाहना कुछ नहीं है। जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ सामने अल्लाह, आयत पढ़ती हैं अजीत के सामने, जुरअत, ये देखिए शहजादी की, अल्लाह अकबर, जुरअत।

सुना है मगर तुम्हारे साथ भेजा है, तुम अपनी आंखों से देखो, ये इम्तिहान से गुजरते हैं, तुम में बर्दाश्त नहीं है, इनमें बर्दाश्त, चूंकि इनमें बर्दाश्त है इसलिए हम इसको नबी भी बना रहे हैं, रसूल भी बना रहे हैं। खैर सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो फिर अल्लाह के इंतखाब पर सवाल सवालिया निशान हमारे गलत फहमी है। बच्चों को मैं समझाने के लिए उमन मिसाल देता हूँ, मसलन फैक्ट्री से गाड़ियाँ निकल रही, कार निकल रही, मसलन किसी गाड़ी का नाम लेना भी परेशानी है, इसलिए कि बोलेंगे मौलाना शायद कमीशन ले रहे हैं उसे। चलो आप पढ़िए मोहम्मद। कमर्शियल है ना, अभी कमर्शियल चीज़ें का, किसी बड़ी अच्छी गाड़ी का नाम लीजिए गाड़ी का, और उस कंपनी में ऑर्डर आया है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कार चाहिए जी। अब चूंकि उस मखसूस कार को मालूम हो गया ये जाएगी प्राइम मिनिस्टर्स को, उस पर बाकायदा गौर किया जा रहा है, बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा है, हर चीज़ उसमें यानी एक्स्ट्रा डाली जा रही है, चूँकि मालूम है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। अल्लाह को मालूम है ये बंदा किधर जाने वाला है, ये अल्लाह को मालूम है ये बंदे में क्या सलाहियत है, उसको और संवार के भेज रहा है, किसी को खलील बना रहा है, किसी को अली बना रहा है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसमें जस्टिस ऑफ अल्लाह से मुतालिक गुफ्तगू इसीलिए बहुत ज़्यादा नाजुक मरहला। खुदा कह रहा है कि अगर हम अजाब नाजिल करेंगे ला युआख़िदुल्लाह, अल्लाह भाई आयत पढ़ता हूँ तो घबराहट होती है, इसलिए अल्लाह बचाए, खुदा बचा ला, इसलिए दुआ है अल्लाहुम्मा आमिलना बिफ़द्लिक वला तुआमिलना बिअदलिक। परवरदिगारा खुदाया तू अपने फजल व करम पर हमारी निगाह कर, अदालत से हमको ना देख, अगर तू अदालत से देखेगा तो हमको फौरन ही बदले शुरू हो जाना चाहिए, हम किसी चीज़ के काबिल ही नहीं है। हकीकत यही है जब इंसान देखता है तो, इसीलिए दुआ है कि परवरदिगार फजल तेरा, फजल तेरा, करम तू करम फरमा, बी मर्सीफुल टू मी, इसलिए कि मुझ में सलाहियत नहीं है, ज़रा सा मुझे टाइम दे, मैं संभलना चाहता हूँ, और मेरे से अदालत से पेश मत आ। यानी अदालत अल्लाह की अगर हो जाए फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى। अगर अल्लाह बदला लेना चाहे तो ज़मीन में कोई नहीं रहेगा सिवाय जानवरों के, कुरान कुरान। अगर अल्लाह बदला ले किरदार की वजह से, ज़मीन पे कोई रहने वाला नहीं है सिवाय जान। क्या करता अल्लाह, युअख्खिरहुम इला अजलिन मुसम्मा, एक ज़माने तक छोड़ देता है ताकि टाइम तुम सुन लो, अभी भी सुन लो, अभी मोहलत दे रहे हैं, अभी मोहलत दे रहे हैं, ज़रा उठो बेदार हो तौबा करो। कितना रहीम है ज़ाते परवरदिगार, उठो ज़रा बेदार हो तौबा करो, अपनी ज़िंदगी को देखो, ठीक करो अपनी ज़िंदगी को, पहचानो वाजिबात की पाबंदी करो, देखो बहुत से गरीब हैं उनका ज़कात अदा करो, खुम्स अदा करो, ज़रा सा संभलो, कितना तुम में बोस्टिंग आ चुकी है, तुम किस तरह मगरूर हो चुके हैं। मौला फरमाते हैं अजब तलमन अफ़खरा अव्वलहु नुतफा व आखिरहु जीफा, ताज्जुब है इस इंसान पर जो फ़ख्र करता है, उसका अव्वल नुतफा है, आखिर में हड्डियों का ढांचा है, बीच में चंद गोश के लोथड़े, क्या है तुम में यार, कुछ भी नहीं है, फिर यह गुरूर कहाँ से तुम में आ गया। अल्लाह इस गुरूर की वजह से लगा सकता है, अल्लाह ने कहना मोहलत दो, फिरौन बनना चाहते हो, अना रब्बुकुम अला, अच्छा सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा रब हूँ, अना रब्बुकुम अला, ये बड़पन बता रहा है छोटा, अगर बड़ा था तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आला मैं हूँ, अना रब्बुकुम अला ने कहा इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़द। अब देखो होशियार होशियार होशियार फिरौन, होशियार होशियार होशियार, अब तौबा करो, अब तौबा करो, अब तौबा करो। मूसा कह रहा देखो देखो आने वाला अज़ाब, नहीं माना। अल्लाह ने कहा नील में ऐसे गर्क करो पूरी दौलत के साथ, ये पूरे जितने भी आज दुनिया में, कुरान कहता है इससे पहले बहुत से कबीले लोग आके चले गए, ये कुव्वतें भी जाने वाली हैं। सलावात पढ़िए मोहम्मद। देर इज़ नो वे के जुल्म जो है लॉन्गर हो सकता है, इन नमा नुम ली लहम लियज़दादू इत्मा, हम मोहलत देते हैं ताकि गुनाह पर गुनाह करें। बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर

ये पढ़ेंगे नहीं तो फेल होंगे, तो ये पढ़ेंगे नहीं तो फेल होंगे। मौलाना मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत कहाँ से आ गई यार, तुमने जैसी करनी वैसी पढ़नी, तुमने जैसा किया वैसा, ये किस्मत में ख़राब क्यों है? इसीलिए लोगों ने क्या रखा, टेस्ट रखा, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दीजिए। हालांकि टीचर को मालूम है कौन कौन कितने पानी में, कहना लोगों को भी पता चले कि एग्ज़ाम खुदा भी ने कहा वाले नब्लू अन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, तुम्हारा इम्तहान लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, कौन कहाँ है, कितने पानी का मोमिन है या मिकदाद है या अबूज़र है सलमा जी। अल्लाह कह रहा है कि मैं इम्तहान लेता हूँ हर मरतबा, मैं टेस्ट करता हूँ। मैं ये जुमला हमेशा से कहता हूँ, सोने को घस के देखो, इंसान में बस के देखो, तब पता चलता है। शादी से पहले माशाल्लाह दूल्हे मियाँ भी लड़के भी बहुत अच्छे दिखते हैं, जवान बच्चे माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, और लड़की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। शादी होती ही पहले बहुत ज़्यादा अच्छी चैटिंग में मोहब्बत माशाल्लाह, या तो निकाह भी हो रहा तो चैटिंग हो रही है। मैं एक जगह निकाह पढ़ रहा था, देखा लड़का जो चैट कर रहा, मैंने कहा क्या यार, अब ज़रा बाद में बात होगी, ज़रा तो हमसे तो बात करो, अब तो निकाह पढ़ना ये क्या चैटिंग कर रहे हो? नहीं नहीं मौलाना मैं चैट नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर में फंसोगे तब पता चलेगा क्या है, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। हकीकत में यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि बस ये जो थोड़ी देर आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव, मैं बहुत मोहब्बत शुरू हो गई है, आई डोंट केयर अबाउट पूरा ख़ानदान क्या बोले क्या बोले, मगर लव हो गया, ओ हो हो हो लव हो गया। जब दो छः महीने के बाद नशा जब लव का उतरता है, इट इज़ टू लेट, हाथ से निकल गया। इसीलिए अल्लाह ने कहा किरदार से मोहब्बत करो, अशख़ास से मोहब्बत मत करो, नफ़रत से किरदार से नफ़रत करो, शख्सों से नहीं, बुराई से नफ़रत करो, बुरे से नहीं। अगर बुरे से नफ़रत करोगे तो कोई बाकी नहीं रहेगा, बुराई से करो, जो गलत है गलत है। बोलो सलावत पढ़िए तो यहाँ से जो बहस है किस्मत की, थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा सा उमन ये उमन चक्कर चलाते हैं। मौलाना मेरी किस्मत खून फूटी में ऐसा ही है, अगर मुझे देना है होता तो इतनी मेहनत के बाद भी मुझे नहीं मिला। बाज़ लोग कुछ भी मेहनत नहीं करते मिलता है, और बाज़ लोगों को ये जो असेसमेंट है इंसान का वो प्री मैच्योर्ड असेसमेंट है। जब तक कि हम नतीजे तक नहीं देखेंगे ये असेसमेंट पर कभी बिलीव नहीं करना है। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, इकबाल जो है जी, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, अगर तुम दरिया हो तूफान होना ज़रूरी। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है जी। तो मालूम है एक इस्लाम है, एक खुदी का इस्लाम है। खुदी के माने अब बहुत ही बहस होती है, इसको कहते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ विल, यानी इकबाल ने एक फ़िलासफ़ी को इंट्रोड्यूस किया, उस फ़िलासफ़ी का नाम है फ़िलासफ़ी खुदी, यानी फ़िलासफ़ी ऑफ विल। ये इकबाल ने नहीं, कुरान ही फ़िलासफ़ी है, कुरान यही कह रहा है, इकबाल तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यजदा, तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं है, क्यों कह रहा है कि मेरी तकदीर फूटी? न भाई, अगर बाकरी यहाँ पर तावीज़ देने लगे ओ सब भूल जाएंगे, मौलाई है या मुनाफिक है या कुछ है, सब भूल जाएंगे, लाइन लग जाएगी माशाल्लाह, पूरा पैसा भी सूटकेस भर के ले जा सकते हैं। लोग जो आते हैं क्यों, इसलिए कि फ्री में सब कुछ मिल जाना है, जाए सब्जी, और ये लोग भी बैठे रहते हैं शिकार के तलाश में बैठे रहते हैं, अब आया अब आया अब आया, अब आया, अब आया, आ गया आ गया, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे अम्मा का नाम क्या है, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फांसने की चलिए, जाल है ये, जाल है जी, जाल में फंसते गए, ओहो बहुत ख़राब हो गया, चारों तरफ से बंद गया है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, रिस्क में प्रॉब्लम है, हर घर की बला है यार, तुम क्या कह रहा है, ये किस घर में नहीं है, मगर जैसे ही अब क्या होगा भाई, चारों तरफ से बांध दिया है किसी ने, ये खुलेगा कैसा, 10,000 मुझे दे दो इंशाल्लाह खोल दूंगा, आपका खुले या ना खुले उसका तो ये है दुनिया। हम लोग चाहते हैं इजी जन्नत, इजी सक्सेस, इजी कामयाबी, इस्लाम ने कहा कि इजी कुछ मिलने वाले, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले।

करना चाहिए, मैंने 10 मजलिसें पढ़ी हैं, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अहलुल बैत अलैहिम सलातु वसलाम, इट्स अ वेरी टफ चॉइस कि मौला अली क्या सोर्स था, इमाम हसन का क्या सोर्स था, इमाम हुसैन का क्या सोर्स था। खुलासा ऑनलाइन है मौजूद, अगर देखें तो मौका, बहुत ही इंटेंस स्टडी है कि हर इमाम, तो ये स्टडी क्यों कर की गई है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इमाम एजाजाना ज़िंदगी बसर करता है, इमाम जो है मेरेकुलसली ज़िंदगी बसर करता है। अगर वो मेरेकुलसली भी ज़िंदगी बसर करे तो मेरा रहनुमा कहाँ रहा भाई, ये गरीब का रहनुमा कहाँ से रहा ना। बीबी फातिमा जहरा लकद तमज्जलत यदा, इतनी चक्की चलाई कि दोनों हाथों में गट्ठे थे, दोनों में लकद तमज्जलत यदा, कभी कभी खून दिसता था, आसान काम नहीं। कैसा ज़माना है, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी हैं, उसी तरह से अहले बैत के घराने में भी अप्स एंड डाउन है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हर मर्तबा दुआ करके खाने जन्नत नहीं मंगाए, अगर मंगाते तो ये गरीब के लिए रहनुमा ना होते थे। एक बेचारी गरीब जो औरत चरखा चला रही है, उसको क्या मालूम है कि फातिमा जहरा ने, अब क्या फ़ख्र से कह रही है, कहेगी कि जिस तरह से मेरी बीबी ने चक्की चलाई है, मैं भी चरखा चला रहा हूँ। सलावात पढ़िए मोहम्मद देखो, आपको ये किस्सा सुना, और ये बहुत ही एक एक किस्सा इंसान को आसानी से, जो टॉपिक में चल रही है वो बहुत आसानी से समझ सकता। मौला फरमाते हैं कि मेरे पास एक दिन ये आलम था कि हमारे घर में सिर्फ एक खजूर था। बहुत गौर कीजिए, आप तो माशाल्लाह ज़रा सा हायर क्लास में ग्राउंड में हैं। मेरे घर में एक दिन ए डे ऐसा आया कि उस दिन खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खजूर था, वन डे। इसको ज़रा सा एनालाइज करना है, क्यों मदीना जाने के बाद जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम में, 80+ जंगें 8 ईयर्स में हुई हैं, और जंग में जिस मैदान जंग में सबसे पहले अगर कोई आगे है, मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमी जानते हैं तो जनरल नॉलेज भी मालूम है कि जब कभी जंग होती है दो चीज़ें नुकसान, नंबर वन इकोनॉमी पे असर होता है, सब जानते हैं, जंग अगर होती है तो इक्तिसाद पे असर होता है, दूसरा मैन पावर पर। मैन पावर पर इतना असर हुआ कि सरकार ने कहा कि लोग जो हैं दाढ़ियों को खिजाब लगाएं। जी क्यों? दुश्मन दूर से देखे पूरे बूढ़े, तो इसके माने कि जवानों का सफाया हो गया था, जवान ख़त्म हो गए थे। रसूलुल्लाह ने कहा कि दाढ़ी को क्या करो, कलर करो, हिजाब लगाओ, डाई करो। क्यों? दूर से दुश्मन देखे तो बूढ़े ना देखे, जवान देखे। तो एक बात तो मालूम हुई, कम से कम अपीरियंस हमारा जवान होना चाहिए, किसी जालिम के सामने कमज़ोर साबित नहीं होना चाहिए। ये दौर था, इस दौर में मौला फरमा रहे हैं कि मेरे पास ये आलम था कि एक दिन ओनली वन डेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं था हमारे घर में। और वो दौर है जबकि शहज़ादी मजदूरी कर रही हैं चक्की पीस के, गोया हल्क। आजकल बहुत बहस है कि मौलाना वन मैन इनकम इज़ नॉट एनफ, बहुत इनकम करना चाहिए, दोनों मेहनत करना चाहिए, यकीनन कीजिए, मगर औरत को इफ़्फ़त और इस्मत को बाकी रखते हुए ऐसे जॉब करना चाहिए जो अपने कंट्रोल में रह सके, ना है कि वो किसी कंट्रोल में चले जाए। शहज़ादी ने 1400 साल पहले बताया, मैं मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई कर रही हूँ। अली इब्न अबी तालिब मुश्किल कुशा, और मुश्किल कुशाई की मुश्किल कुशाई कैसे, चक्की पीस रही हैं, आटा जो है मजदूरी जो लाते थे लोग, ये गेहूं है आप पीस के दीजिए इतना पैसा, शहजादी हेल्प कर रही हैं, किसकी, घर की। तो मालूम दे, इट्स कैन बी डन, कैसे, इज्जत और एहतराम इंसान बाकी रखे और काम करे। मौला फरमाते हैं कि मेरे पास एक खजूर था, उसको हमने कट किया, वो टुकड़े मुँह में रखे, एक रात ऐसी। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि मेरे पास आज इतनी दौलत है, मालूम है 25 साल, अक्सर हम ये समझते हैं कि मौला खामोश थे, मौला जान जी नहीं, 10,000 खजूर के दरख्त, खजूर के दरख्त के लिए 20 to 25 ईयर्स लगते हैं। मौला फरमाते हैं कि अब मेरे पास इतनी दौलत है, बनी हाशिम में तकसीम कर दूँ तो कोई गरीब नहीं रहेगा।
तो मालूम हुआ जिस तरह से मैं हार्डशिप से गुजरता हूँ,

औलिया अल्लाह हैं वो लोग चैलेंजेस को कबूल करते हैं। और अशार बाज़ वक्त एक एक घंटे का बात एक शेर कह सकता है, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने जी। प्लेन हम देखे, आप प्लेन में एक जगह एक हाथी के सूंड की तरह एक हवा लगी हुई है, क्या है वो, वो देखते हैं कि हवा का रुख किधर है, उड़ता से किधर से है, आपोजिट से है। तो जब हवा के आपोजिट आएंगे तो तब कहीं बुलंदी हो। अगर आप बुलंदी हम चाहते हैं तो हम बलाओं से भाग जाएंगे तो कमी कामयाबी होने वाली है। बच्चे अगर कामयाब होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईटी मास्टर्स होना चाहते हैं, आपको फेस करना है प्रॉब्लम को ताकि बुलंद हो। प्रॉब्लम को फेस करते मत बोलो अल्लाह ने मेरे साथ क्यों किया, ना अल्लाह ने नहीं किया, तुमने अपने हाथ, कुरान सिंपल ये कहते हैं अल्लाह ने कुछ नहीं किया, तुमने तुम्हारे हाथों से किया। तो किस्मत कहाँ पर है, मेरे हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है। फजल परवरदिगार के, जी हाँ, बाज़ वक्त अल्लाह जो है फजल करता है ताकि देखें ये किस तरह से रिएक्ट करता है। बाज़ वक्त बेहिसाब दे देता है, कुछ को कुछ देता है, कुछ को सब कुछ दे देता है, लेकिन देने के बाद वो रिएक्ट कैसे करता है अल्लाह देखता है। मगर ये घराना देखता है कि जब ये दिल देते हैं तो ये कभी अपने रास्ते को छोड़ते नहीं हैं। युफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रहु मुस्ततीरा व युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतअमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन। एक वाक़ा, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्वैप मत कीजिए। आजकल क्या हो गया मालूम है, हाथ में फ़ोन है। अच्छा ये अच्छा नहीं, पहले क्या था, दो तीन मिनट की देखते थे, वो भी नहीं देख रहे, स्वैपिंग। तो अच्छा बाकरी स्वैप, मजलिस को स्वैप मत कीजिए, आगे बढ़ाइए नहीं, सोचिए, गौर कीजिए। ये जो मजलिसें हैं कोई मामूली चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बरकतें ज़ात परवरदिगार ने हमारे सामने दी हैं। इसको बहुत गौर से, रावी, रावी के माने रिपोर्टर, मैं आजकल की ज़बान, रावी के माने रिपोर्टर। रिपोर्टर कहता है कि मैं मौला की हुकूमत के ज़माने में मस्जिद कूफा में गए, जबकि हुकूमत थे मौला जो है खलीफा वक्त, नमाज पीछे पढ़ी, किसके, मौला की। अय है, आप भी इमाम के साथ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ये पढ़ना चाहते हैं, कितना खुशकिस्मत है मौला अली के पीछे नमाज़ पढ़ लिया, और कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ें। आप पढ़ना चाहते हैं जी, बताऊं मैं आपको गुर, वक्त पे नमाज़ पढ़िए गोया आप इमाम ज़माना के पीछे पढ़ रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, रिपोर्टर कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ा पीछे मौला के, मौला ने कहा थैली लाओ थैली लाओ। अब आई बिकेम क्यूरियस, अब मैं ज़रा सा क्यूरियस हो गया कि थैली के बैग के माने खलीफा वक्त बला मंगा रहा है तो इसके माने समथिंग वैल्यूबल होगा उसमें। वो बैग आई तो उसमें सील थी, सील लगी हुई सील, तो आई बिकेम मोर सीवियर, यानी बहुत क्यूरियस हो गया, इसमें तो और के इसमें सिवाय पैसे के कुछ और नहीं होना चाहिए कीमती चीज़ों की। मौला ने सील तोड़ी, अंदर से सूखी रोटी के टुकड़े, आई कुड नॉट रिजिस्ट, मैं कुछ नहीं रोक, मैंने कहा कि मौला ये सूखी रोटी को सील करने की क्या ज़रूरत थी। मौला ने कहा इसलिए किया था कि मेरी मोहब्बत में मेरी बच्चियां इस पे तेल ना लगा दें, यमन में कोई यतीम भूखा रहे। कूफे में बैठ करके यतीम ये है दीन, ये है रिलीजन, ये है स्पिरिट ऑफ रिलीजन। ये सिवाय दरे आल हमामत के कहीं आपको मिलता नहीं है, हद तक हर जगह डिवोरिंग है। ये वो घराना है, खलीफा वक्त कह रहा है कि मुझे ये परेशानी है कि यमन में कोई बच्चा यतीम, आज मालूम है टुडे इन यमन क्या हो रहा है, 19 मिलियन पीपल आर डाइंग स्लो डेथ, 19 मिलियन, 100 मिलियन से जायद बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन के यानी चले गए, रोज़ाना हर रोज़ मर रहे हैं। हमें छोटी छोटी बातों में उलझाया गया है, वो अल्लाह 5 हैं, मासूम 18 हैं, मैं मौला ही हूँ, मैं ये चक्कर में हूँ। इन चक्करों से हटिए।

0: अब पागल हो गई हैं क्या या फिर खेल रही हैं मुझसे? मुझे जलील करके मुझ पर हंसना चाहती थी।
1: क्या कह रहे हो इब्नानी, किस पर हंसूंगी?
0: जब कूफे के हजारों मर्दों की दरमियान से अपनी जान बचाने के लिए मुझे चुना, मेरे अंदर क्या

0: देखा था। तुम्हें लगा कि मैं इतना बड़ा आशिक हूं कि इश्क के लिए अपने अली के शियों का खून बहाऊंगा? मैं तुम्हें जल्लाद लगता हूं या जासूस?
1: कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें दिल दे दिया।
0: अपने दिल की बात को बीच में ना लाओ। मैं तो तुम्हारे खेल में शामिल हो गया, अब मुझे और फंसाना चाहती हो? तुम भी जानती हो और मैं भी कि हम यहां क्यों आए। अगर तुम्हारे ये हालात ना होते, अगर रेशम के बिस्तर में आराम फरमा रही होती तो मुझे अपना साथी कभी ना चुनती। तुम कहां और मैं कहां?
1: मतलब अब तक मुझ पर भरोसा नहीं? भूल गई थी कि मुझ पर तरस खाकर तुम यहां आए हो।
0: मैं अपने दिल की बात पर कायम रहूंगा, मगर बगैर किसी शर्त के, बगैर मुखबिरी और धोखेबाजी के।

0: अगर उसने शर्तें मान ली तो क्या मेरी बेटी तुम्हें बोझ लगने लगी है जो उसे नीलाम कर रहे हो? कल तक अमीर साधों और दरबारियों की बात चल रही थी और आज कोफे के कमांडर के बाद क्या हो रहा है ये? काश अच्छे से परख लेते, इसके नए नक्श देख लेते। देखते हैं मशरिक से मगरिब तक और सारे इराक में हमारी आरजू परी जैसी बेटी से रिश्ता जोड़ना है। ऐसे में मैं बैठी रहूं और हिलाल के साथ शादी की हामी भर दूं? इससे ज्यादा बेहसब और नसब नहीं मिला था आपको नाइला के लिए? जानती हूं खराबी मुझ में है, क्योंकि अगर नाइला नईम की सगी बहन होती, अगर कनीज की बेटी ना होती वो, अगर मैंने उसे पैदा ना किया होता।
1: ठीक है, तुम एक दिन इस घर की कनीज थी, अगर निकाह के बाद इस इमारत की मसनत पर बैठी एक मलका बन गई जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। इतने सालों में खाने पीने मोहब्बत और ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ी है मैंने? या नईम की इज्जत और एहतराम ज्यादा होता है या नायला का?
2: खुशामद।
3: मेरे घोड़े को अंदर ले आओ।
2: जो
3: जितनी भी कोशिश करती हूँ दिल को सुकून पहुंचाने की, आपका हर काम उसके खिलाफ होता है। अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है।
0: फिर दिमाग खराब हो गया है इसका? दरवाजा खटखटाने का अदब नहीं है तुम्हें लड़की?
3: खुदा की कसम, बेहतरामी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, जान हलक तक आ गई है। मुझे बस एक ही बात कहनी है, या तो मुझे बगैर किसी शर्त के शादी करने की इजाजत दे, या बगैर इजाजत वो करूंगी जो नहीं करना चाहिए।
0: किसकी बात कर रही हो? उस फटीचर की जिसका कोई हसब और नसब नहीं है, उसी की बात कर रही हो तुम?
3: एक बेहसब और नसब लड़के से शादी करना उस निकाह से लाख गुना अच्छा है, जिसे कोई भी नाम दिया जा सकता है सिवाय शादी के। अगर मेरा सौदा करना चाहते हैं तो बेहतर है मैं हिलाल से शादी कर लूं।
1: फालतू बातें ना करो लड़की, माल और मनार की कमी नहीं है मेरे पास कि अपनी नामूस को बेचकर मनसब खरीदना पड़े। मैंने अगर कोई शर्त रखी है तो तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए रखी है।
3: सच तो यह है कि उसे चाहती हूँ, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे, क्या करूं?
1: हिलाल या कोई और, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अहम हो जिसे सीधा करना चाहता हूं। तुम चाहती हो मैं शर्त हटा लूं? ठीक है, हटा लूंगा।
0: इतना ही
1: नहीं, तुम्हारी पसंद जो भी रहे मेरे पास भेज दो ताकि मैं खुद उससे बात करूं।

0: माँ कुछ हुआ है क्या?
1: शक में गिरफ्तार हो गई हूँ। एक तरफ से मीसम जो खत ना लिखने पे बज़िद था और दूसरी तरफ बासित जो खत भेजने का वाकया समझ में नहीं आ रहा।

0: कुछ हुआ है क्या?
1: शक में गिरफ्तार हो गई हूँ। एक तरफ से मीसम जो खत ना लिखने पे बज़िद था और दूसरी तरफ बासित जो खत भेजने का वाकया। समझ में नहीं आ रहा फिर से खत लिखूं या नहीं, नहीं पता।
0: मतलब फिर से खत लिखने का जोश आया है? इस मर्तबा कौन ले जाएगा, आप खुद या मैं? खुदा की कसम आप जो कर रही हैं हराम है। कह रही थी ना कि जनाबे हबीब ने एक खत लिखा है तो उसी पर दस्तखत कर दो, बस इतना सा ही काम करना है आपको। खुद खत लिखने की जिद छोड़ दो, दावत देना अहम है।
2: माँ बाबा आए क्या?
0: नहीं मेरी जान, नहीं आए।
2: मुझे लगा आ गए हैं।
0: आ जाएंगे मेरी बेटी, आ जाएंगे मेरी जान।

0: किस हक के तहत मेरे बेटे को शियों के साथ बैठने से रोक रहे हैं?
1: शियों के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हैं और उनकी जान को खतरा है। पहले से सबका नाम बताया गया है मगर उनका नाम नहीं है।
2: सलाम बानो।
0: सलाम।
2: सुनो भाई, जनाब हबीब ने फरमाया है कि सामिया खातून और उनके बेटे ये उनके मेहमान हैं और इनके यहाँ आने में कोई हर्ज नहीं है।
1: जो हुक्म तशरीफ लाए।
2: आइए मेरे साथ।
1: मशाल अंदर नहीं ले जा सकते।

0: कौन है जो ना जाने के अर्श से मिलने वाली रस्सी इमाम है? अगर कमाल और मगफिरत की बात है तो इमाम का होना जरूरी है। हुकूमत आले अली के अलावा किसी के भी हाथ में गजबी है, जुल्म है।
1: खुदा की कसम, हम दुनिया और आखिरत दोनों खो बैठे हैं। मलौन ने हुक्म दिया है कि हुकूमती खजाने में शियाओं को हिस्सा ना दिया जाए। इसका मतलब तो फकीर और बदबख्त होना है।
0: खुदा का सलाम हो आप पर। इमाम का जिस्म और रूह रहमत और बरकत है। परवरदिगार का दस्ते सखावत आसमान और जमीन सभी दरवाजे खोल देगा, मगर हमारे आज का दर्द पानी की कमी, बारिश ना बरसना, सोना चांदी वगैरह नहीं है, बल्कि हिदायत और अखलाक का नूर है जो खामोशी की जानिब बढ़ रहा है।
2: खुदा की कसम ऐसा ही है। अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे ताकि इमाम तशरीफ लाएं।
0: या अल्लाह,
2: अली की हुकूमत ज़हन में रखिए और दिलों को मजबूत कीजिए।
0: माफ करें, इंतजार करना पड़ा।
3: आपकी माफी कहां और मुझ जैसा गुनाहों में मुब्तिला शख्स कहां?
0: आपकी हुस्न नजर है। लोगों, जरा गौर फरमाइए, ये खत जनाब सुलेमान इब्ने सुराद, मुसैयब इब्ने नजमा, रूफा इब्ने शद्दाद और मुजहकीर की कोशिश और ताईद के साथ तहरीर हुआ है। पढ़ दिया गया और आप सभी ने सुन लिया। अगर हामी भरते हैं तो तवक्कुल कीजिए और दस्तखत कर दीजिए ताकि आपके तवक्कुल के नूर से परवरदिगार की अजीम रहमत नाजिल हो इंशाल्लाह।
4: इंशाल्लाह।

0: क्या हुआ मीसम, खत का मजमून पसंद नहीं आया क्या?
1: ये जान लीजिए कि आपके अलावा हमारा कोई ईमान नहीं है, तो हमारी जानिब आइए। खुदा की कसम, इस खत में बहुत से ऐसे नाम देखे जो मुश्किल वक्त में वादा तोड़कर अपने ईमान को छोड़ देंगे।
2: ला इलाहा

0: बेटा, अगर अभी और इस लम्हे तुम्हारा दिल इस खत पर दस्तखत के लिए राजी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना बेटा। मेरा दिल नहीं चाहता कि खुद को मजबूर करो और आखिरत में अपने आप से शर्मसार रहो। यहां पर होना ही इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल आले अली के साथ है।
1: मेरा दिल राजी है, अगर इजाजत दें तो अभी दस्तखत करना चाहूंगा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह।

0: Calma. Calma. Calma. उठो मेहमान आया है।
1: कौन?
0: मेरे बाबा। शुक्रिया बहू।
1: नौशवर में।
0: तुम दोनों रोजे से हो ना? अगर खुदा कबूल करे, कबूल हो इंशाअल्लाह।

0: आप क्यों वाजिब को छोड़ बैठे हैं?
1: एक हफ्ता रहा, देखा हाथ पैर में जान नहीं बची। उसी खुदा ने जिसने रखने का हुक्म दिया है, ज़ईफ इंसान पर रोजे को हराम किया है। मैं हराम काम नहीं करता।
0: आपको देखकर लगता है कि आज तिजारत खाना नहीं आने वाले हैं।
1: देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चों के इंतजार में हूँ और रहूंगा। जाग जाएंगे तो उन्हें देखकर खुद ही आ जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार ना करो।
0: नौश फरमाइए।
1: बैठो।

0: उस तिजारत खाने में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अपना सब कुछ खो दिया और आफत से टक्कर ली। बड़ा घर है तुम्हारे पास, बेहतरीन शौहर, दो बेटे हैं, किसी भी औरत का अच्छा नसीब क्या है। नेमत को ठुकरा दिया तुमने बहू, अपनी किस्मत को खुद ठोकर मारी।
1: आप औरतों के बारे में क्या जानते हैं बाबा? खुशकिस्मती का नुस्खा बांटते हैं और जो भी आपकी इताअत ना करे उसे करीबियों की फेहरिस्त से बाहर निकाल देते हैं। बाप के पुरमन घर को आपके बड़प्पन की वजह से छोड़ा और कूफा की तरफ आ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी सुबह शाम नईम की लातों और घूसों में गुजरेगी। आपके हिसाबों किताब से हम औरतें आपकी अय्याशियों में अजीज हैं और बाकी वक्तों में सलील। एक बार भी मुझ पर ध्यान देकर इंसानों में शुमार नहीं किया आपने। हम में और कनीजों में आपकी नस्ल का बोझ उठाने के अलावा कोई फर्क नहीं है। आपके नजदीक आपके अलावा, आपके माल और अम्वाल के अलावा, उस मनहूस तिजारत खाने के अलावा कुछ भी अहम नहीं। हम सब कठपुतलियां हैं आपकी। जब किसी काम के ना रहे तो हमें फेंक दिया जाएगा और बस। हत्ता तुम्हारी बेटी की माँ, वो तो लगता है कि आसमानों से आई हुई कोई परी हो। उसकी बदकिस्मती की भी बारी जरूर आएगी।
0: शहद का प्याला, शहद मुझे दो तो।

0: अपना मुंह मीठा कर लो।
1: रोजे से हूं मैं।
0: तुम्हारे ताक लहजे को मीठा कर देगा।
1: मेरी कड़वी किस्मत किसी भी शहद से मीठी नहीं हो सकती।
0: सुबान बंद। जो भी गिला दिल और दर्द सीने में था सब बोल चुकी। खामोश रहो वरना तुम्हारी जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा। बिल्कुल खामोश रहो, सर झुका कर रहो, समझी के नहीं। तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा यहाँ रहना मुसीबत और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। अपना सामान इकट्ठा कर लो, शाम को जाओगी अपनी बहन के पास, वह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डर है मेरी आंखों के सामने रहोगी तो कुछ ऐसा कर दूंगा कि फिर उसका जवाब ना दे सकूं।
1: खुशखबरी हो जनाब औहद, चली जाऊंगी, मगर जान लीजिए कि अपने बेटों के साथ शाम की तरफ जाऊंगी।
0: ठीक है।

काश उस दिन जुनैद ने बयाबा में ही तुम्हारी बेटी का खून बहा दिया होता तो तुम्हारे बुढ़ापे और शिकस्त को अपनी आंखों से देख सकती।

0: हाँ ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। जरा ठंडा शरबत पिला दो, प्यास मारे डाल रही है। खुदा बरकत दे, खाने की खुशबू पूरे गली में फैल गई है। क्या बात है, औहद साहब बड़े दिल वाले और सखी हो गए हैं। हाँ
1: उम्मीद में मत रहो, ये बड़े लोगों के निकाह का खाना है।
0: किसकी शादी?
2: जुनैद की बीवी यहाँ क्या कर रही है?
0: जनाब औहद ने हुक्म दिया था कि सभी नौकरों को काम पर लगा दिया जाए।
1: वालिया को तो आप भी जानते हैं, कहा था कि उसका मुंह बंद करे और उसकी जेब गरम करे, और ये भी कहा था कि यहीं पर रहे।
2: तुम्हें क्या काम है?
1: मैं यही देखने आई थी कि मेरा कोई काम तो नहीं है।
2: नहीं जाओ।
1: जी
3: नाइला बेटी, अब कोई काम नहीं बचा, चला जाए।
4: किस्मत वाला है दामाद जो हमारी दुल्हन का दिल ले गया है। खुदा बरकत दे।
3: तुम्हें मुबारक हो, घर चलो। रात के लिए बहुत काम बचा है ना पीटर।

0: بھی کھاؤ. ہاں ہاں
1: इधर तो आओ.
2: मामू जान,
1: चले
2: इतना वक्त हो गया, हमने साथ में खाना नहीं खाया.
1: हाँ तो अब खा लेंगे.
2: मामू मुझे रोजा और रमजान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते.
1: क्यों?
2: क्योंकि मुझे भूख लग जाती है.
3: बहुत खुश हम
4: नावल मजा आ गया.
3: या अल्लाह.

0: कहीं ऐसा ना हो कि बासित की वजह से फिर से आहत से मिल गया हो। खुदाया खुदाया खुदाया, पता नहीं जब ये पेट में था तो क्या खा लिया था कि ये लड़का इतना सादा लोह और ना समझ हो गया है।
1: इस बार बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा बासित के लिए भी बचा लूं।
2: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence and compassion. Give your child a place to belong, learn and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: ये खामा खा की जिद छोड़ दो अबू इसहाक, मैं जाने वाला नहीं हूँ।
2: जाने वाले नहीं हूँ, तुम्हारे एक पांव कब्र में लटका हुआ है।
1: हाँ, जज़ाकअल्लाह खैर है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अभी तक तुम्हारे होश ठिकाने पर हैं। मैं दुश्मन को पीठ दिखाने, घुटने टेकने और फरार करने वालों में से नहीं हूँ।
2: तो ये कहो कि मर जाने के लायक हूँ।
1: बंदर खुदा, अब मुझे दुनिया का चौकीदार तो नहीं बनाना। मेरी तमन्ना थी कि कातिलाने हुसैन की जिल्लत रसवाई को देखूं, जो कि मैंने देख ली। और फिर मेरी उम्र चंद महीनों के सिवा और बची ही क्या है।
2: तुम्हें मजीद जीना होगा।
1: जबरदस्ती की वजह?
2: तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि क़याम को जिंदा रहना है। आज के बाद से क़याम की बुनियादें तुमसे वाबस्ता हैं।
1: इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी एक आलिम फाजिल शख्स होगा वो ये काम कर सकता है।
2: हाँ, मगर ऐसा मुनसिम शख्स कहाँ है जो अदलो इंसाफ को बरकरार रखे और नफसानी ख्वाहिशात पर कुर्बान न हो जाए, सच को झूठ और झूठ को सच का जलवा न दे, और अपने मजहब और मकसद का दिफा करने के लिए सच की मोहरफी न करे। तुम एक मुनसिफ, दीनदार और आलिम शख्सियत हो उबैदा, और हमारी खूबियां और खामियां तुम जानती हो।
1: मैं थक गया हूँ अब इसहाक। मैं इस कौम की हिमाकत, हुलिये और दुनिया परस्ती से तंग आ चुका हूँ। तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम है, इजाजत दे दो कि हम मिलकर ये सफर करें।
2: पागल तराशी मत करो। मेरे बाद आने वाले लोगों की सरनोश अब तुम्हारे हाथों रकम होगी। तुम्हें रुकना होगा और मुख्तार और उसके क़याम को जैसा कि वो था दुनिया को बताना होगा।

0: अमीर का खारे पानी से नहाना और वो भी सबके सामने बिना वजह नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो अब्दुल रहमान?
1: मैं अपने कायद की पैरवी करते हुए उसने शहादत करना चाहता हूँ।

0: एक साल से हमने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देखी। जहाद जहाद करने से सवाब और माल गनीमत मिलता है। एक साल का सवाब हमारे सात मुश्कों के लिए काफी है। माल गनीमत को भी ठुकाने के लिए तैयार हैं हम। आखिर कब तक ऐसे दयार में सरगर्दा रहना होगा जहाँ के लोग जरा से भी मुसलमानों की खूबू नहीं रखते। एक मुजाहिद को बाप के कातिल की नजरों से देखते हैं। उनकी आंखों से नफरत बरस रही और उनके होंठों पर वो मुस्कुराहट है जो ढेरों ढेर गालियों से बदतर है।
1: तुम क्यों इतना उछल रहे हो?
0: क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं इस कौम की जबान हूँ।
1: अच्छा, तो ये हंगामा आरई इज्तिमाई है?
0: हंगामा आरई नहीं है शहजादे, ये मुजाहिदीन की एक शरई जिम्मेदारी है उनके अमीर से। कमोबेश दो महीनों से हमने इस कुफर के महल का मुहासरा किया हुआ है और उसे फतह करने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। क्यों?
1: ये एक जंगी राज है मुजाहिद। क्या तुम लोगों के उमरा अपनी जंगी इसरार का ऐलान करते फिरे?
0: जी नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे उमरा बैठे ना रहे ताकि दुश्मन वो ना कर गुजरे जो वो चाहता है। मैं महल के तमाम तर मुहाफिजीन से दोस्ती कर चुका हूँ। लम्हा ब लम्हा उनसे गुफ्तगू की है मैंने, उनको बहुत कुरेदा है मैंने। वो लोग तो बहुत खुश हैं, डट के खाते हैं, मजे से सोते हैं और इस इंतजार में है कि गुर्बत हमारी कमर तोड़ दे।
1: ये झूठ है बंदा खुदा, ये लोग तुम सबको जहनी शिकस्त देना चाहते हैं। अगर सारा कसरे कूफा खाने पीने से भर दिया जाए तब भी इन 7,000 लोगों को नहीं पाला जा सकता जो इसमें कैद हैं।
0: सुना है कि महल के अंदर कुछ मख्फी गोदामों तक रसाई हासिल कर ली है जो खाने पीने से भरपूर है।
1: खुदा की बना, तुम मानते हो इस बात को?
0: अजायबात मुख्तार को देखने के बाद तो जरूर मानता हूँ।
1: तो अहलो अयाल से दूरी का गम कौम बनी इसराइल की मनोसलवा किसी दास्तां है। तो हजरत इबलीस हमें बहका रहे हैं ताकि मुख्तार के मौजात को मान जाएं, बाकी सब बातें बहाना है।
0: अमीर, ये बेदीन और कज़्ज़ाब मुख्तार इस तवील मुहासरे के जरिए हमें थका देना चाहता है। अगर वो हार मानने वाला होता तो अपनी नामूस को दुश्मन की तलवार की जब्त न छोड़ता।
2: शाबाश मुजाहिद, शाबाश। मैं भी एक मिले जुले नतीजे को पहुंचा हूं। ऐसा लगता है कि मुख्तार की गिरा हाथ से खुलने वाली नहीं है, उसे दांतों से खोलना होगा।
0: माफी चाहता हूं अमीर, मेरा मकसद।
2: सच्चाई का कोई जवाब नहीं होता मुसलमान। हमने शरीयत मुकद्दस के हुक्म के मुताबिक इस मुल्हिद को एक तवील मोहलत दे दी ताकि इजहार अफसोस कर ले। मुल्हिद को अफसोस नहीं हुआ, उसने तौबा की ना घुटने टेके और जो हमारे सब्र की जिम्मेदारी तमाम हुई। खुदा ने चाहा तो कल मगरिब से पहले पहले मुख्तार के मौजजात और उसके नाकाबले शिकस्त होने के अफसानों को झूठा साबित कर दूंगा। इब्ने होर,
3: मैं हाजिर हूं अमीर।
2: मंजदीक से महल के खोलते हुए पानी के मटकों को तोड़ दो ताकि महल के दरवाजे पर हमला करने का रास्ता खुल जाए।
3: जी अमीर।

ये दुनिया अपने तमाम तर फैलाव के बावजूद एक दिन मिट जाएगी और चांद सूरज सितारे अपनी तमाम तर रोशनी के बावजूद खत्म हो जाएंगे। ये पहाड़ अपने तमाम तर गुरूर और बुलंदी के बावजूद एक दिन रेजा रेजा हो जाएंगे और समंदरों का नीलापन खत्म होकर सारा पानी उबल जाएगा और जंगलात का हरा रंग सुर्खी में बदल जाएगा, बिल्कुल पिघले हुए लोहे की तरह। ऐसे वक्त में इंसान उस मकोड़े की मानिंद होगा कि जिसके घर में पानी आ गया हो और वो परेशानी के साथ पुरम जगह की तलाश में दौड़ता है और दौड़ता है और दौड़ता है कि कहां है जन्नतुल मावा। एक पुल को अपने और खुदा के दरमियान हाइल देखता है और ये पुल कभी चौड़ा होता है और कभी बारीक, कभी फैला हुआ और कभी पेचोखम वाला, कभी तेज धार वाला, लड़खड़ा देने वाला। इस दुनिया में आमाल ही उसकी कैफियत और नौयत का तायुन करते हैं। जालिम हाकिमों के लिए बाल की तरह बारीक होता है और कदम लड़खड़ा देने वाला। उस रोज हमारे तमाम आज़ाओ जवारे हमारे अदलो इंसाफ या फिर ना इंसाफी की गवाही देंगे और कोई भी अमल ना इंसाफी से ज्यादा हौलनाक नहीं है। आप लोगों ने कुछ अरसे अपने मामलात की बागडोर को मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी के सुपुर्द किए और आपने ये चाहा कि वो आपके दरमियान अदलो इंसाफ से हुकूमत करे। जहां तक मुझसे हो सका मैंने आपके हक के लिए तगोदो की और अदलो इंसाफ की राह की आफतों से लड़ता रहा। मैं जो भी था और जो भी हूं मेरा खुदा बेहतर जानता है। नापाक अजायम वाले कजाब कहते हैं और अहले जुल्म जूर मुझे दुनियादार और जालिम कहते हैं। जो खता से मबर्रा है वो सिर्फ खुदा का वली और वसी ही हो सकता है। मुमकिन है कयाम की राह में मेरे कदम लड़खड़ाए होंगे और कहीं मेरी जबान फिसल गई होगी, शायद कानों ने न सुना हो या आंखों ने नजरअंदाज कर दिया हो। खुदा से इल्तमास है कि वो मुझे बख्श दे और खुदा अरहमर राहिमीन है। आज मैं धोखे के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं जो दिन के लिए सबसे बुरी आफत है। धोखा परहेजगारी और दयानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा वो दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानेब खुदा का नाम और दूसरी जानेब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। अवाम खुदा वाले हिस्से को देखती है और अहले मार्फत इब्लीस वाले हिस्से को। और क्या क्या जख्म दिल खाए हैं मौला अली ने। इस सर बसजूद और आयत पढ़ने वाली कौम और बज़ाहिर दीनदार कौम के हाथों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू

मैं वादा करता हूं कि अगर कियाम के शुरुआत के दिनों की तरह तलवार चलाओगे तो कामयाब रहोगे और तो के बाद दुश्मन पर गलबा पालोगे। आप लोगों के दरमियान मुमकिन है ऐसे अफराद भी होंगे जो घुटने टेकने का इरादा रखते होंगे। मैं इनके सरों से अपनी बैत उठा रहा हूं और इतमाम हुज्जत कर रहा हूं कि धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकावमत को तोड़ सके। लेकिन गलबे के बाद कोई शक नहीं, वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा।

0: क्या अमीर वाकई मैदान में जाना चाहते हैं?
1: जैसा कि नजर आ रहा है ऐसा ही है।
0: हमारे तवील मुकाबले ने दुश्मन के घुटने टेक दिए हैं। मुझे पक्की खबरें मौसूल हुई हैं कि कूफे के लोग जुबैरियों की फौज के मौजूदगी से तंग आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुश्मन मजबूरन हिसार खत्म करके पीछे हट जाएगा।
1: क्या तुम्हें यकीन है?
0: वही इसी बात का तो एहतमाल है। सुबैरी लश्कर के सिपाही कूफे में अजनबी हैं, उन्हें घर बार बीवी बच्चों की भी तो याद आती है ना, और फिर खाने पीने का इंतजाम भी उनके लिए दुश्वार काम है। यूं समझो कि हमने दुश्मन की खाल उतार दी है, बस जरा सा काम रह गया है, अब उसे जाने देना ठीक नहीं।
1: अमीर से बात कर लो, शायद तुम अपने दलाल से उन्हें कायल कर सको।
0: अमीर मेरी निस्बत तुम्हारी बात ज्यादा सुनते हैं।
1: मुझे माफ करो इस्माइल, मुख्तार जहाद के मामलात में मुझसे ज्यादा आलिम फाजिल है। मेरा फरीजा उसकी इक्तदा करना है।
0: तलवारों और नेजों के दरिया में छलांग लगाना कोई जहाद नहीं, खुदकुशी है।
1: क्या ये उस शख्स का अकीदा है कि जिसका दावा है कि उसके पेशवा हुसैन इब्ने अली हैं? तुमसे बईद है, तुमसे बईद है कि एक उम्र जहाद करने के बाद जुबैरियों की इसी मंतक में बात करो।
2: बस बस रुक जाओ रुक जाओ। अमीर अगर फासला ज्यादा हो जाए तो गोले की शिद्दत कम हो जाएगी।
3: करीब हो तब भी तुम्हारा गोला सही वार नहीं कर सकेगा। दरवाजे के ऊपर खोलते हुए पानी के मटके देख रहे हो? उन मटकों को मारना है।

0: ये क्या करना चाहता है?
1: खुदकुशी, अपना कफन भी पहन चुका है।
0: जाफर की राय ठीक है मोहल्ला?
2: मुख्तार मैदान में इसलिए आया है गरजस खानी करे, हो सकता है वो तुम्हें भी मुकाबले के लिए बुलाए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए।
0: मेरा दिमाग खराब नहीं है जाफर, इंतहाई शोर मचाओ ताकि वो हल मिन मुबारिस का नारा ना लगा सके।
3: ये लोग जानबूझकर ये आयत पढ़ रहे हैं ताकि आप कोई बात ना कर सकें।
4: खुदा का शुक्र है कि मैंने धोखे को पहचानने में गलती नहीं की।
5: कहाँ जा रहे हो बेवकूफो?

0: तारिक।
1: हाँ तारिक।
0: इसके सर की क्या कीमत होगी?
1: मुख्तार का सर संगीन है तारिक। कायदे के मुताबिक तो इस सर के हम वजन सोना दिया जाना चाहिए।
0: है?

0: तंग तो नहीं करती? अच्छी सवारी है ना?
1: हर सवारी की अलग खासियत होती है। आप सवारी को पहचानने वाले हैं अमीर। इस सवारी को मुहार करना मुख्तार

0: इन सबको कत्ल कर दो।
1: ये खून का सैलाब इनके घरों को बहा ले जाएगा।
2: इस मुंह और जवाब के बाद हमारा कोई रकीब नहीं होगा।
3: असद, तुमने बनी जुबैर को हथियार करके दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा कर दिया।
4: महल्लब, तुमने उसका साथ दिया है जो बेगैरतों का नाम रोशन करेगा।
5: इस कुर्सी नशीन का फातिहा भी पढ़ लो अबू मुफलिस, ये तो हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।

0: आज मैं धोखे से लड़ने जा रहा हूं जो दीन की बदतरीन आफत है। धोखा परहेजगारी और दयानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा एक ऐसी दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानिब खुदा का नाम और दूसरी जानिब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकाबिमत को तोड़ सके, लेकिन गलबा पाने के बाद कोई शक नहीं वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा।
1: खुदा की कसम, अगर ये लोग भेड़ बकरी होते और मुसब के बाप और दादा की जागीर होते फिर भी सबको मारना महज इसराफ होता।

है तू बेवकूफ, तमीज नहीं कर सकता। दोस्तों जब हम नफ्स रसूल को मानते हैं तो सर को जाते हैं, उन बेवकूफों को मानते तो कहते हैं उखुवत है। अब सुनिए, सबसे पहली चीज जो असल है सब जानते हैं, मैं सिर्फ अपने जवानों तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूं, वरना दारुसलाम के लिए दो रातें किसी कीमत काफी नहीं। इतने दोस्त, इतने अहबाब, इतने जानने वाले, इतनी बड़ी जमात, इतने काम, इसके बावजूद दो रातों के लिए आया हूं सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने के लिए। ताकि अब आप देखते हैं, एक जमाने में बैठता था, यह सब सियाह हुआ करता था, अब सफेद हो गया। अब बुढ़ापा जो है भड़क के निकल आए, अब कितने दिन जिंदा रहने के हैं कुछ मालूम नहीं। आवाज मेरी सुन लीजिए और ता कयामत महफूज रख दीजिए, और खुदा हमें कयामत तक मरते दम तक अहले बैत की राह पे बाकी रखे। फाखर के साथ आज उसूल पर गुफ्तगू करूंगा, कल फुरू पर गुफ्तगू करूंगा, और साबित कर दूंगा कि उसूल और फुरू की हिफाजत सिवा अहले बैत के किसी ने नहीं की। इसलिए मैं अपनी आकिबत के लिए मोहब्बत करता हूं, ना कि मुझे कोई पैसे दिए अली इब्न अबी तालिब, ना उमर ने मेरे पैसे खाए हैं। असल दीन है जात इलाह, है जात इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो असल दीन। इधर तौहीद में फर्क गायब, सीधी सी बात, कोई भी फुरू ले लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्तों पैवंद बुताने वहम गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां, एक खुदा वहदहू ला शरीक लह। अब सुनिए, मुसलमानों की किताब, इधर अहले बैत का दरवाजा छोड़ा, खुदा एक हंसने की चीज बनके रह गया। ये वो जब अर्श पर बैठता है, मुसलमानों की किताब, तो इतना मोटा है, इतना झाड़ा है, इतना मोटा है कि अर्श उसको कंटेन नहीं कर सकता, और चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है। अगर ये मिंबर कमजोर हो और मुझ जैसा आदमी बैठे तो आवाज आएगी चिड़चिड़चिड़, अभी गिरा, अभी मरा। अर्श भी लरज रहा है, चिड़चिड़ा रहा है इतना, और न सिर्फ ये बल्कि इतना मोटा है खुदा के चार चार उंगल जो है अर्श के बाहर है। तो ही जी आप मुस्कुराते हैं, वो लाह रोने की जगह मुसलमानों ने लिखा है। कयामत के दिन जब जहन्नम ये कहे कि हल मिन मजीद, या अल्लाह है कोई और भेज, मेरा पेट अभी तक भरा नहीं है, तो खुदा कहेगा अब कोई बाकी तो नहीं रहा, अपना पैर डाल देगा। किताबों में मुसलमानों उस वक्त जहन्नम पुकार के कहेगी कि बस बस बस बस, भर गया। नमरूद ने तीर जो मारा तो खुदा की आंख में लग गया, बेचारा काना है। शबे जुमा को मस्जिद की छत पे आता है तो लोग घास फूस रखते हैं ताकि खुदा का गधा भूखा निकल जाए। कयामत के दिन जब मिलेगा तो हैंडशेक करेगा सब मुसलमानों को, थैंक यू तुम मुसलमान जो रहे, चलो तुमको जन्नत में ले जाऊं। ये टोपी उतारता हूं मजबूरी से, फैशन नहीं है। तो अब ऐसी सूरत मिले दोस्तों, हिंदुओं के यहां एक मजहब है जिसका नाम है जैन, जैन मजहब, आर्य समाजी, माफ कीजिए, आर्य समाज, आर्य समाजी जो है स्वामी दयानंद वाले, वो मूर्ति को मानते नहीं, मूर्ति खंडन है, वो लोग खंडन।

मतलब है घेर लिया, जब घेर लिया तो फिर इसका मतलब है कि हर जगह नहीं है। तो किसी ने पूछा तो हम हाथ बुलंद करते दुआ के लिए, फरमाया ये हाथ बुलंद करना इसलिए नहीं है कि वहां है वो, ये हाथ बुलंद करना मांगने का अदब है। जब कोई मांगता है दे मुझे, तो जिसका मतलब यूं मांगना एक तरीका है। जिसने कहा उधर उसने घेर लिया, जिसने घेर लिया उसने गिन लिया, क्या बात है। जिसने कहा वो कहां है उसने दूसरी जगहों को उससे अलग कर दिया, जिसने कहा किस चीज पर है उसने उसको मुत्तसिल करके उसका मजबूर कर दिया। क्या बातें की अली इब्न अबी तालिब ने कि समझो कि खुदा की जात क्या है। अहले बैत के दरवाजे से हटे तौहीद गायब, और यहां पर जो आया उसने अली इब्न अबी तालिब इमाम हसन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अइम्मा इत्ना अशर के एक एक इमाम के पास जो कुछ हासिल किया तौहीद, तौहीद खालिस। जहां शिर्क का शायबा नहीं है। अब मुझे आप बताएं अहले फजल बैठे हैं कि जहां मेरी तौहीद और मेरा अकीदा सलामत है वहां कर चुका हूं, यहां जहां गुमराही भी चिपट रही हूं वहां कर चुका हूं। कैसे? सिर्फ खिलाफत का झगड़ा नहीं है, अकीदे का झगड़ा है मेरे दोस्तों। तौहीद खतरे में, रिसालत नबुव्वत, हम ये कहते हैं कि वो मासूम हों, वो ये कहते हैं हां नबुव्वत के मामले में मासूम, बाकी मासूम होना जरूरी है। हां नबी होने से पहले मासूम होना जरूरी नहीं, उनको तो खजूर की भी खबर नहीं थी। ये उनका अकीदा है, और हमारे यहां अकीदा यह है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, एक लफ्ज न बोलेगा मेरा रसूल मगर उस पर पहरा आए वहय रब्बानी। ये फर्क है इसमें। मैं कहा करता हूं मैं डॉक्टर हूं, आपने पूछा काहे का, मैंने कहा मैं अस्थमा का इलाज करता हूं। अब बेचारा अस्थमा का मरीज दाखिल हुआ देखता है मैं भी भाग ही जाएगा, वो कह कमबख्त खुद का इलाज नहीं कर सकता, दूसरे का क्या करेगा। जो दिन भर गुनाहों में हो वो कौन सी रिसालत लाएगा, आप समझ रहे हैं। तो अब वो मलऊन जमाना किताब जिसको सटनिक वर्सेस कहते हैं जी, वो लिखी गई जिस मलऊन ने लिखी है, खुदा गारत करे उसको, यदि उसने रसूल के साहब को गालियां दी सबको गालियां। मगर मैं पूछता हूं इंसाफन अपने कलेजे पे हाथ रख के कहिए कि ये किताब उसने लिखी किस सोर्स से लिखी। अरे उन मुसलमानों के हाथ से लिखी जिनके हाथ अहले बैत नहीं। यकीन ना आता हो तबरी उठा के देखिए, तबरी ने लिखा है, तबरी लिखता है कि मक्के के सनादीद को खुश करने के लिए रसूल अकरम ने एक मरतबा दिल में दुआ की, परवरदिगार आज कोई ऐसी आयत न उतार के ये नाराज हो। देखिए पैसे वालों को खुश करना है भाई, ये पूरी दुनिया की सुन्नत है, पैसे वाले खुश तो कौम खुश, तो मौलवी भी खुश, मुल्ला भी खुश। खुदा की खुशी बाद में आती है मेरे दोस्त। और अल्लाह को जिद, अल्लाह को जिद के आज ही आयत भेजू, बस पैगंबर दुआ करते कि ना भेज, ये नाराज है। चुनाचे वो आयत उतरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह उतरा वन्नज्मि इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये आयत ये सूरह है जिसमें सजदा वाजिब है। चुनाचे वो

अब वहां पर बुत बड़े बड़े पड़े थे, उसमें दो परिंदे की शक्ल में सफेद बुत भी थे, जिसका ये सजदा करते थे लोग। रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से उसमें दो आयतें डाल दी, वह तिलकल गरानी खुलूंगा वह इन शफात लतुर्तजा, यह है वो बड़े बड़े परिंदे सफेद बुत जिसकी शफात का कयामत के दिन उम्मीद रखते हैं। और सारे मुश्रिकीन खुश हो गए, हो गया कॉम्प्रोमाइज, मुश्रिकीन ने सजदा किया, रसूलुल्लाह ने भी सजदा किया। किताब अपनी है मेरे दोस्तों, तबरी उस मुसलमान की है जिसके यहां अहले बैत। रात हुई जिब्रील अमीन आए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन में जो सूरह हमने तुम पे खुदा के हुक्म से नाजिल किया था, पढ़ के सुना। तो पैगंबर ने सुनाई वो आयतें, उसमें ये आयत दो दो डाल दी साथ में। तो जिब्रील ने कहा ये तो मैं नहीं लाया था, ये शैतान ने तेरी जबान पे जारी किया, इसका नाम है आयात शैतानी, जिसका तर्जुमा हुआ सैटनिक वर्सेस। लिखने वाले को गालियां दे रहे, ठीक है अरे फांसी चढ़ा दो, मार दो, जो कुछ करना हो कर दो, और जिन्हें सिखाया उसको क्या कहेंगे आप? इन्हीं ने लिखा है, उन्हीं मुसलमानों ने लिखा है। एक तरफ यह है और एक तरफ आके देखिए हमारे अहले बैत रहमतुल्लाह के घराने में कि रसूलुल्लाह की क्या अज़मत है। तो जिसने जिनके यहां पहुंचकर हमारी नबुवत भी गई और तौहीद भी रुखसत, आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अंदाजा लगाइए। अभी इमामत और अदालत की बातें छोड़ देता हूं, अदालत पर हर किसने लगाई सुनिएगा, अदालत इलाही को खत्म करने के लिए इसलिए कोशिश की गई और यह कहा गया, इन्होंने कहा अगर खलीफा अच्छा है तो खुदा का शुक्र अदा करो, अगर खलीफा बुरा है तो भी शुक्र अदा करो, इसलिए उसने भेजा। यहां इसका मतलब क्या? इसका मतलब बनू उमैया के मजालिम खुदा ने करवाए, बनू अब्बास के मजालिम खुदा ने करवाए, करबला का पूरा अलमिया खुदा ने करवाया, इनके जुल्म को, इनके जुल्म को ढांपने के लिए खुदा की अदालत हो सकता है। इट्स ए फैक्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एंड नो वन कैन डिस्प्यूट कि अदालत इलाही को दरमियान से उखाड़ के फेंकने का मकसद यही था, ताकि जालिमों ने जो भी किया है वो अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाए और जो वो करे मुझे नहीं हो। हमारे यहां वो काले जो है शराब पीते थे, हम कहते कमबख्त शराब पीतनी में जली हो वाले, तो ये भी में जली हुआ, अल्लाह ने किया है। इस वजह से दरमियान अब अदालत भी रुखसत, अब बाकी रही इमामत, सिरे से मानते ही खत्म हो गई बात। तो जनाब जहां उसूल दीन खतरे में है वहां पर आप मुझे कहते हैं देखो हम सब एक हैं, क्या एक हैं? अब क्या एक इस चीज में? देखिए दुश्मन के मुकाबले में सबका एक हो जाना और चीज है, अपने उसूल को कुर्बान करके एक हो जाना ये और चीज है। ये दुश्मन के मुकाबले में अगर हम सब डट के खड़े हो जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, ठीक है समझिए कि भाई जल्ब मनफात यानी मनफात को लेने के लिए, दफ़ ज़रर नुकसान को रोकने के लिए हम एक हो गए, मगर जहां यहां अपने अपने घर की बातें हों वहां तुम दुनिया को यह समझाना चाहते हो कि सब एक ही था? नहीं था और नहीं है, और बड़ा फर्क है मेरे दोस्तों, बड़ा फर्क। बस मैं ये कहा करता हूं कि करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी हुई है, वो भी जिस पर हम और आप मिलकर आज सदियों से, हम क्या हैं आबाओ अजदाद और उनके आबाओ अजदाद ने सदियों से मातम किया है और गम के आंसू बहाए हैं। मेरा सवाल एक ही है, रोते हम आए सीने पर मातम

करते हैं, तुम्हें दर्द क्यों होता है? हम तुम्हारे सीने को थोड़ा मारते हैं, नहीं? तुम्हारी आंखों से हम रोते हैं, हम रोते हैं, दुख हम मनाते हैं, मातम हम करते हैं, और दिल तुम्हारा टूटे जा रहा है। बात क्या? बात यह है दोस्तों कि एक एक हाथ जो सीने में पड़ता है कुफ्र के मुंह से निकाब को उठा देता है। यह है काफिर जिन्होंने इस्लाम के लुबादे में अपने आप को छुपाया। मैं परसों एक जगह पे मजलिस में कह रहा था कि कौमें दो किस्म की होती है। एक वो कौम होती है जिसका माजी मुर्दा होता है, सुनिएगा सीधे, जिसका पास्ट डेड। मैं कहूं मेरा बाबा मुसलमान, मेरा बाबा बादशाह था, दादा बादशाह था, पर्दा था, आप कहेंगे सब था, तू क्या है बता, ठीक है कि नहीं? इसलिए कि वो हड्डियां वो सीधा हो चुकी कब्र में, पितरम सुल्तान बूत बूत खत्म शोध, तू क्या है, ठीक है? इन्नल फता मन कालहा अनरा लैसल फता मन काल कान अभी। जवान मर्द है जो कहे देख लो मैं ये हूं, नहीं कि मेरे बाबा थे, बाबा थे ना। अब सुनिए, कौम जिसकी माजी में सिर्फ हड्डियां हो या वो हड्डी भी बाकी ना हो, वो कौम मुर्दा कहलाती है। इसकी क्यों तारीख जो है मुर्दा है। अफसोस है कि मुसलमानों के यहां औरों के जिन्होंने अहले बैत का दामन छोड़ा, आप सब मदीने मुनव्वरा जाते हैं पैगंबर की जरीह को चूमने देते हैं नहीं, क्यों? कहते खत्म हो गया मोहम्मद, बाकी नहीं रहा, हड्डियां खत्म हो गई, अब सिर्फ ये ऊपर की जरीह बाकी है, क्या चूमते हो? उनकी नजर में मोहम्मद मुस्तफा भी बाकी नहीं है, और हम अहले बैत के यहां एक एक बाकी है। लिहाजा वाइब्रेंट कम्युनिटी होनी चाहिए, इसीलिए दुनिया डरती है। ए कम्युनिटी विच इज वाइब्रेंट एंड द हिस्ट्री इज नॉट डेड। सुनिए, जब इंकलाब ईरान आया और खुदावंद करीम इंशाअल्लाह इस इस्लामी इंकलाब को ताबा अबद बाकी रखे, तो 40 का जमाना आया पहले साल, और वो ईरानी मोमिनी सब के रास्ते पर वो क्या कफन पहने हुए शबी खून के लगाए हुए कतरात या हुसैन करते हुए माथा। मिस्टर कार्टर ने देखा टेलीविजन पर, वो समझा कि आ गए खुमैनी मर गए। उसने दूसरे को पूछा ये क्या हो रहा है, ये आज कोई पहुंच नहीं मुसीबत ईरान पे वारिद हुई। किसी ने कहा नहीं वो तो जिंदा है शेर, वो जिंदा है, तो ये रोते क्यों है, पीटते क्यों है, कौन सी मुसीबत आई है? तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि बात ये है कि ये अपने रसूल के नवासे पर रो रहे हैं। तो उसने कहा ये वो कब मरा? उन्होंने कहा ये मरने की बात नहीं, मारे गए 1300 सदियों के बाद भी रो रहे हैं। तो जवाब सुनिएगा, और जिस कौम में 1300 सदियों के बाद शहीदों का खून जिंदा और ताजा हो उस कौम से डरिए। हाँ जी, इसलिए कि वो खून अभी तक जिंदा है, वो ताजा जोश मार रहा है, इसीलिए लड़का छोटा भी होगा एक मरतबा खड़ा हो जाएगा या हुसैन कहेगा वो खून अभी तक जिंदा है। समझ रहे हैं? और कल की खबर किसको है? कल की खबर है, अरे इस मिंबर से उतरने से पहले क्या होगा अल्लाह ही जानता है। एक लम्हे की खबर नहीं, फ्यूचर डार्क है। तो क्या कहिए इस कौम पर खुदा की क्या रहमत है कि इसका फ्यूचर डार्क नहीं है, इसके पर्दे गैब में जिंदा इमाम बैठा है।

गोशे में, दोनों गोशे में, दोनों एक्सट्रीमिटीज में, जहां हयात हो, जहां जिंदगी हो, उसको हम क्या कहिएगा? अब आप मुझे चाहते हैं कि आपके जवानों घसीट के मुर्दों के हाले, जिनका न मुस्तकबिल है, जिनका न पास्ट है, उनके साथ में अपनी कौम को ले जाऊं और जवानों को कहूं कि तुम भी हाथ बांध के नमाज पढ़ो, अस्तगफुरुल्लाह, और तुम भी आमीन कहो, और तुम जो नमाजें पढ़ते हो, तीन वक्त की पढ़ते हो, अल्लाह ने पांच वक्त की कल जवाब दूंगा, बेवकूफ कहीं के समझ सके हो तुम अहले बैत को? नहज बलाग में मौला फरमाते हैं ला युकास बिना अहल बैत, अरे हम अहले बैत पर किसी का कयास हो ही नहीं सकता। फख्र कीजिए कि हम अहले बैत के चाहने वाले, फख्र कीजिए कि हम उनकी फिक्र पे चलने वाले, फख्र कीजिए कि उनके बताए हुए उसूल पे चल रहे हैं और रास्ता खोया नहीं, और जो रास्ता खोने के लिए जवानों को आमादा करे उसे कह दीजिए भाई आपको मुबारक, जाइए हमारे जवानों को गुमराह नहीं करो, समझ आए ना? बड़ी जहमत उठा के इस मिल्लत में बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया है, ये शाख, ये फल, ये जड़, ये तना, ये पूरा दरख्त शियत का, उसमें शहीदों का खून है मेरे दोस्तों। सो आवर इंक्लिनेशन एंड प्रोपेंसिटीज टूवर्ड्स अहले बैत इज गवर्न्ड बाय अ रैशनल एंड नॉट बाय सेंटिमेंट्स, समझ रहे हैं? गवर्न्ड बाय रैशनल, नॉट बाय सेंटीमेंट्स। बाद में पहले अक्ल से हमने सोचा है, वे किया, जिन्होंने वे नहीं किया था उन्होंने पैगंबर की लाश को यूं ही छोड़ा था, और खिलाफत की टोह में चले गए। आज रसूलुल्लाह की शहादत की शब है दोस्तों, उनकी वफात की शब है 28। अगर एक मिनट के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि आज वफात पाते दारुस्सलाम मसलन, और हम आप नए मुसलमान होते, हमारे दरमियान से रसूलुल्लाह उठ गए होते, तो आज मेरी और आपकी क्या हालत होती? किसी पहलू चेंज ना होता, रोते रोते हम भी मुमकिन है कि बेहोश हो जाते अगर मर न जाते, कि हमारे दरमियान से रहमत खुदा की उठ गई, हमारा नबी उठ गया, और क्या हो गया मदीने वालों को कि आज गुस्ल के लिए अहले बैत के लोग हैं और बाकी सब दुनियादारी में पड़े हैं। बात यही है, जहां अहले बैत का दामन छूटा वहां सब कुछ। बस वो आखिरी मराहिल, अल्लाह रसूलुल्लाह हैं अपने बिस्तर पर और फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हैं। दोस्तों मसाइब के बयानात में तसव्वुर शब्द है और ज्यादा नहीं, तसव्वुर शब्द है, इसलिए कि आज से घोया अब अहलुल बैत यहां मसाइब की इब्तिदा है। अब यहीं से आए दोस्तों करबला की राहें खुलेंगी, यहीं से बहुत कुछ होगा। सुनिए, फातिमा जहरा बैठी रो रही हैं, एक मरतबा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बीबी ने कहा रसूलुल्लाह की हालत ऐसी नहीं है, तुम रसूलुल्लाह को आराम करने दो। दूसरी मरतबा फिर जब दरवाजा खटखटाया, बीबी ने फिर कहा रसूलुल्लाह की तबीयत और हालत मुख्तजी है कि कोई अभी डिस्टर्ब न करे। जब तीसरी मरतबा दरवाजा खटखटाया और बीबी चीख मार के रोने लगी तो पैगंबर की आंखें खुली और कहा फातिमा जिंदा हूं, अभी हुक्म आया नहीं है, क्यों रोती हैं आप? कहा बाबा कोई मानता नहीं, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है मुसलसल, गो मैंने बारहा कहा मानता नहीं, एक
مرتبہ رسول نے دیکھ کے کہا بی بی یہ تو آپ کے گھر کا منزلت ہے،

की घड़ी है। हुजूर आपकी दुख्तर का दर जलाया गया, हुजूर आपकी दुख्तर का दर जलाया गया, हुजूर हुजूर आपकी दुख्तर पे दर गिराया गया, हुजूर आपकी तुर्बत से चंद कदमों पर, आपकी मस्जिद से चंद कदमों पर, हुजूर हुजूर आपने आवाज तो सुनी होगी, हुजूर बैन तो कानों में गूंजते होंगे, हुजूर शोर वही शोर कैद करने का, हुजूर लकड़ियां दरवाजे पर गिराने का, हुजूर शोर वही शोर बाब हिता पर, हुजूर कहकहों का ठोकरों का दस्तक का, हुजूर हुजूर शोर वो दरवाजे के उखड़ने का, हुजूर बैन तहे दर हदीस बिजवत का, हुजूर बैन वही बैन अल मदद फिजा, हुजूर शोर वही शोर ताजियाने का, हुजूर हुजूर नील के चेहरे पे सब्त होने का, हुजूर शोर वही शोर बैन वही बैन, हुजूर जुल्म हुए और बेतहाशा हुए, हुजूर अश्क बहे और बेतहाशा बहे, हुजूर इस पे भी इस्मत की पासदारी रही, हुजूर फिर भी अली को नहीं पुकारा गया, हुजूर फिर भी अली को नहीं पुकारा।

0: इसकी जान बख्श दी।
1: मेरा बाप और भाई मुझे शाम की बहू बनाना चाहते हैं। बाजार के सामान की तरह मुझे पेश किया गया। यह है मेरा बाप और बनी उमैया की गैरत। देखना चाह रही थी कि तुम अलवे गैरत रखते हो तो क्या करोगे, और देख लिया।
0: क्या तुम बासित की जगह लेना चाहते थे?
2: जो जहन्नम मेरे लिए बनाई है बासित के हाल से बेहतर नहीं है।
0: हैफ है तुम्हारी जवानी पर, जो बुजुर्गों के सियासत के खेल में जाया हो रही।

0: तुम्हारी माँ से सुना है नामोस के सिलसिले में अली से ज्यादा कोई गयूर नहीं था। अब जब मुसलमानों की नामोस तुम्हारी पनाह में आई है तो तुम ऐसा कर रहे हो?
1: आया हूँ ताकि चादर से पैर बाहर निकालूं और तुम्हारी बेटी का हाथ मांगूं।
2: मैं नायला के साथ उसके निकाह के लिए राजी हूँ।
1: तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे इश्क में शियाने अली का खून बहाऊंगा?
3: मेरा फैसला वही है, या मुझे निकाह की इजाजत दे बगैर किसी शर्त के, या मैं वो करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए।
4: क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें दुल्हा देखने की आरजू एक उम्र से मेरे दिल में बसी है?
1: अगर तुम उनके नाम और नमक को हराम नहीं समझती, तुम्हारा हुक्म सराखों पर, मुझे तन्हा ना छोड़ो।

0: खुशामदीद भाईजान, तशरीफ लाइए। आइए और देखिए क्या बंदोबस्त किया आपके लिए। हकीकतन आप इसके लायक हैं।
1: ढोल ताशे बजाओ, दूल्हा आ गया है।

0: देख रही हो ना तुम?
1: आखिरी बार पता नहीं कब जनाब बहुत का रक्स देखा था। आज तो जनाब बहुत ज्यादा खुश हैं। लगता है इन्हीं के कुप्पे के रईस हैं।
0: इस घराने की नौकरानियों के लिए खुशी और गम में कोई फर्क नहीं है। साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, बस।
1: समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे आ गई। एक तरफ तो वो गुस्सा और बेइज्जती करना और दूसरी तरफ ये इज्जत और एहतराम।
2: पुतला बन गई हो, आओ और मेरी मदद करो।

0: से शादी क्यों नहीं कर लेती? नायला जो हजादार थी शादी कर रही है। तुम तो माली तौर पे जरूरतमंद भी हो।
1: इस घराने की नौकरानियों के लिए क्या खुशी और क्या गम, कोई फर्क नहीं है।
0: कहाँ? दुआ करती हूँ कि रहती दुनिया तक खुदा इस घर के लोगों का साया हमारे सरों पर बाकी रखे।
2: अब बस भी करो, मेहमान नवाजी का सामान देकर नायला के पास जाओ।
3: ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खानम जान, चेहरा छिपा लीजिए, पूरे शहर का दिल चुरा चुकी हैं।
2: बस करो, नायला के पास जाओ।

0: काम था मुझसे।
1: अकेले में दम घुट रहा है, अब बस भी करो, जितना हो गया वो काफी है। कहीं देखा है कि सूरज को सजाया जा रहा हो? जब तक मेरे पास हो मुझे याद रहेगा कि क्यों घर और घराने से दूर दूल्हे के जोड़े में यहाँ पे हूँ। जब नजरों से ओझल हो जाती हो तो डर और परेशानी मुझे घेरने लगती है, उस वक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आता।
0: तुम्हारी बहन आने को तैयार नहीं हुई? ये जो तुम्हारे हाथ में है, क्या वो तुम मेरे लिए लाए हो?
1: डर था कि कहीं नजर न लग जाए, जबकि मैं पर्दे के पीछे से देख रहा हूं, मगर मेरा डर बढ़ गया है।

0: तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए।
1: अरे माशाल्लाह,
0: दुल्हन का चेहरा देखने के अपने आदाब है बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा देख लिया?
1: नहीं।
2: जनाब आहद और नईम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम खवातीन के दरमियान हो। अंधेरे में लड़की का चेहरा देखने के लिए कमरा तैयार नहीं किया अभी। अभी जाओ यहाँ से।
3: माफ कीजिएगा।
2: चेहरा देखो जरा।
1: माशाल्लाह,
2: तुम इससे भी ज्यादा काबिल और खूबसूरत हो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल आ गया है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारी मर्जी वही होगा। बस मुझे इत्मीनान दिला दो, वाकई उसे चाहती हो अपने पूरे दिल से।
1: पूरे दिल से? खानम जान, जनाब औहद को आपसे काम है।
2: अभी आ रही हूँ।

0: क्या करूं मेरे बच्चे, जाऊं या ना जाऊं? मेरा दिल खून का प्याला हो गया है बेटा। मुसीबत में फंसी अपनी माँ के लिए दुआ करो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।
1: मैंने नहा लिया।
0: सलाला, 100 मर्तबा तुमसे कहा है कि अपना सर धोने से पहले मुझे बुला लिया करो। देखो इसे, अभी भी वैसे ही हो जैसे नहाने से पहले थी। सुनो, फिर से आप गली में मत चली जाना, थोड़ी देर तो साफ

0: सुत्री बनी रहो।
1: चुप भी करोगी आया, बच्ची के साथ इस तरह सख्ती से पेश आना बंद करो। इसके लिए इतनी मुसीबत काफी है कि अपने बाबा से दूर है। आहिया माँ बन चुकी हो, सख्ती झेलो, मुसीबत सहो और सब्र करो।
0: अगर कुछ कह रही हो तो मुसीबत सहने और सब्र करने की ताकत भी है हिलाल की माँ।
1: अब क्या किया है?
2: बहुत मुबारक हो बेटा।

0: मुस्कुराओ मुस्कुराओ, लड़की की अच्छा शिकार फंसा रखा है और अभी तक इससे अनजान हो। हमारा कमांडर दामाद लग रहा है ज्यादा खुश नहीं है।
1: इत्तेफाकन इसका उल्टा है। बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर रख दी है। हिलाल को अपना दामाद बनाना आसान नहीं है। जो बेटी उसे दी है बड़े नाजों से पाला है। सुकून और चैन के अलावा कुछ नहीं देखा। अगर देखा होगा तो मेरी क्या हैसियत। एक तरफ तुम और एक तरफ ये नाजों की पली हुई। तुम्हारी मर्दानगी और शुजाअत का शोर कूफे के चप्पे चप्पे में है, मगर यहां से काम और मुश्किल और तुम्हारा बोझ और भारी होगा। बजाएं।
2: मुबारक हो दोनों को।

0: नहीं तलमा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो?
1: क्या
0: तलमा कहाँ है? हर जगह मैंने उसे ढूंढा लेकिन मुझे नजर ही नहीं आ रही।
1: अपने सफर का बहाना करके नहीं आई?
0: क्या मतलब, उसका सफर आज रात थोड़ी ना था।
1: मुझे क्या पता, आप जाइए खुश रहिए, आज रात आपकी बेटी की रात है, तलमा की भी।
0: दिल खोल के पीजिए।
2: बहुत ही ठंडा और मजेदार है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मेरी जन्नती हूर इन जहन्नमियों के बीच ना रहो।
0: उस लड़की के घर से कहां तक पहुंचे नहीं आया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई रहे और कोई ना रहे? पता है आपको, पूरी दुनिया के हजारों में से एक बहू और दो पोते थे, वो भी नहीं आए।
2: नहीं आए?
0: सफर का बहाना बना रखा है।
2: मैंने हुक्म दिया था सबको रहना है, पता नहीं वो खुद बहरी है या नहीं।
3: अलवान, अलवान,

0: लगता है जनाब का मुंह सीधा नहीं होने वाला। कल सवेरा होने से पहले निकलते वक्त घर के अंधेरे में ये मत कहना कि मेरा फला कपड़ा और टोपी कहाँ रह गई है, मिल नहीं रही। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जवाब दो।
1: नहीं। आज फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही होगी। बहुत बुरी हो माँ, काश मुझे बाबा के साथ जाने देती।
0: ये बहन, दिमाग खराब कर दिया है आतिफ। कितनी बार कहूँ, बच्चा वहीं जाता है जहाँ उसकी माँ होती है। देख नहीं रहे हो क्या कि कितना काम पड़ा है? जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे रात में जाके दुल्हन को देख लेना।

0: ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो?
1: नहीं पहनूंगा मैं।
0: आखिर क्यों?
1: क्योंकि इसे दादा ने खरीदा है।
0: आखिरी बार बड़ों की बुराई करते हुए सुनूं, समझे?
1: अच्छा है कि आज की रात ही यहाँ से चले जाएं।
0: हमेशा के लिए थोड़े जा रहे हैं, वापस आएंगे।
2: रुको, मेरे बाबा ने हुक्म दिया है जल्दी से तीनों शादी में पहुंचो।
0: इससे पहले हुक्म दिया था कि तलमा उनके घर में कदम न रखे। ये पुरानी दुल्हन किस हुक्म पे अमल करे?
2: बगैर एक लफ्ज बोले चलो। कहाँ? नईम की बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं हो। अपने कपड़े बदल लो, तब चलते हैं। वही कपड़े पहनना जो शाम में यजीद की दावत में पहने थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यजीद खुद तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम्हें देख रहा था। सुन लिया ना क्या कहा? जाओ पहनो।
1: बाबा ये कपड़े अच्छे हैं ना?
2: बहुत अच्छे।
3: शामिल, मेरी आंखें राह देखती रह गई, कहाँ थी आप? जैसे ही उसे देखा तुम याद आ गई। एक लाल गुलाब की तरह नयन के कमरे में थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। जाओ देखो मेरी बेटी कैसी लग रही है आज। हाँ
4: खुशामदीद, इंतजार ही कर रही थी।
0: सच में क्या जोड़ी बनाई है लड़की। काश कि तुम्हारी थोड़ी सी अक्ल मेरे पास होती। कोई तुम्हारे मंसूबे को समझ नहीं सकता।
4: मैं
0: यजीद के चंगुल से निकलकर कूफा के कमांडर के पहलू में आ गई, कमाल है। इसे सोने में भी तोलो फिर भी कम है। कम है ऐसे मर्द जो अपने आप को किसी लड़की पे कुर्बान कर देते हैं। मुबारक हो तुम्हें।

0: माफ कीजिएगा भाई, बस इतना ही बचा है। ईद मुबारक।
1: आपको भी मुबारक हो। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: सलाम।
0: सलाम बहन। गोश्त तो है नहीं, अगर जिंदा दुम्बा चाहिए तो ले सकती हो।
2: नहीं चाहिए, रहने दीजिए आप। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज। बेटी सुनो, दुकान समेट लो। मुस्लिम, फिर खास भूसा दरवाजे पर डाल दिया है, समेट कर दरवाजा खोल दो, इन बेजबानों को अंदर भेज दो। बहुत अच्छा किया कि आज आ गई, तुम्हारी आज की मदद ना होती तो उसका आधा भी नहीं बेच पाते।
2: घर में तो कुछ करने को था नहीं, मगर ऐसा लग रहा है आप बहुत मसरूफ हैं बाबा। सामिया का घर, नजर का गोश्त, और उसके बाद पुराने रिश्तेदार जनाब औहद।
0: तुम फिर से ताना दे रही हो।
2: मैंने पता नहीं क्या किया था जो रिश्तेदारी भूल गए और हम दोनों को बुलाया तक नहीं उन लोगों ने। ऐसा भी हमने क्या कर दिया।
0: कब से नजर खाने के लिए दावत की जरूरत पड़ने लगी। हाँ,
2: आपको भी मदऊ नहीं किया ना।
0: क्या कह रही हो, कौन सी दावत, कहाँ?
2: सामिया के बेटे और औहद की बेटी का निकाह, हिलाल और नायला। ख्वाब में भी देख सकते थे ये दोनों खानदान रिश्तेदार बन जाएंगे।
0: बकवास कर रही हो तुम।
2: पूरी जिंदगी मेरी माँ के रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया, हमारा आना जाना तक हराम कर दिया था। आज सबसे पक्की शिया अली के दुश्मनों से बेटी ले रही है, अजीब नहीं लगता?
0: यकीन है तुम्हें? मैं वहां था।

0: हिरन का शिकार कर लिया कमांडर?
1: देर कर दिया आने में।
2: खुशामदीद।
1: खुशामदीद।
2: खुशामदीद।
0: अभी भी मेरी नाराजगी बाकी है, मगर घर पे भी नहीं रह सकती। डर रही थी यही एक शादी करो और मैं ना आ सकूं। इस हुस्न पे कुर्बान जाओ। माशाल्लाह।
1: खुशामदीद।
0: सच में हिलाल, हमारी छोड़ो, कम से कम सब्र करते बासित रिहा हो जाता तो जरूर आता। और तुम इस तरह तन्हा और अकेले बिल्कुल नहीं रहते।
1: अगर उस लड़की की परेशानियां ना होती तो मैं कहां और ये बेवक्त शादी का। देख रही हूं, डर रहा हूं कि अपने शौहर के अधूरे काम को पूरा ना कर दे।
0: खुदा ना करे, फिक्र मत करो, मेरा ध्यान उस पर है।
3: जनाब औहद बात करना चाहते हैं, आप घर में तशरीफ लाए।
4: इस रिश्ते के बाद हिलाल मेरे लिए दूसरा बेटा होगा। आज रात की मुनासिबत से एक तोहफा लाया हूं कि इस जैसा पूरे कूफा और शाम में नहीं। ये मेरे घर का सबसे प्यारा तोहफा है। इसे घर वालों के भरोसे पर तुम्हें सौंप रहा हूं।
5: यह तो जाहिर है कि खुदा ने किस्मत बांटते हुए इस कमांडर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी।
0: खुदा अली के शिया की हिफाजत करे, जो फिर से खुशी और हंसी को तुम्हारे घर वापस लाया है।
4: हिफाजत करेगा, बजाइए।
5: इसके हाथों से लिया जिसने इतना मस्त कर दिया।
6: तुमने मुझसे एक वादा किया था।
5: होश में नहीं हूं, दामाद आदमियों में से।
6: रुकिए जनाब औहद, आप तो कूफे में माविया के कातिब और चुने हुए आदमी हैं, तो फिर कैसे इकलौती बेटी को एक ऐसे घराने की बहू बना रहे हैं जिसका हर एक फर्द अली के नाम पे जान देता है?
4: इब्ने हुरैस, क्या हम में और अलवियों में ये पहली शादी है? बोलो।
6: नहीं।
4: तो फिर मुंह मीठा करो।
6: तुमने उसके बाप को सिफीन में कत्ल किया। उस नए दामाद की जाती दुश्मनी के बावजूद बैठो और अपनी बेटी की खुशी का इंतजार करो।
5: इब्ने हारिस, इब्ने हारिस,
2: चलिए।
6: तुम अली को नहीं मानते, कैसे इनके साथ रिश्तेदारी बनाने पे तैयार हुए हो?
5: चलो जरा हवा खाने।
4: क्या ये पहली शादी है? हम में और अलवियों के दरमियान बताओ।

0: और तुम लोग
1: तो फिर मुंह मीठा करो,
2: सब्र करो।
1: सब जानते हैं
2: जिस दिन से इस कपड़े को पहन
1: रखा
2: उसके बाद से इस बात को भूल चुका।
0: इख्तिलाफात बहुत है,
2: सुनो और गुजर जाओ।
0: जिंदगी तकदीर का खेल है और अल्लाह के फजल और करम से हिलाल उससे कामयाब निकला है। आ जाओ।

0: काश उसे यहाँ ना बुलाया होता, वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है।
1: अपनी मर्दानगी को साबित करने का वक्त आ गया है हिलाल, वरना जिस शोर की आवाज सुन रहे हो शाम तक जाएगी और हमें बर्बाद कर देगी।
2: लोगों की बकवास तो कभी खत्म नहीं होगी, मगर फिर भी जैसा आप हुक्म करें।
1: मेरे मौला वलिए नेमत के तरीके से खड़े होकर बुलंद आवाज में अली पे खूब लानत भेजो।
2: क्या करूं?
1: अली पे लानत भेजो।
2: अपने मौला पे लानत करूं? नहीं, आपने अपनी बेटी को ऐसे शख्स को दिया है जो कभी जुर्म नहीं करता। मेरे मौला अली को गलत कहना मुझ जैसे के लिए खुला हुआ जुल्म है।
1: तुमने कहा था कि नायला से शादी करने की शर्त अपने खानदान से बेजारी, बनी उमैया की रस्मों पर अमल करना है। तुमने मान लिया, नहीं माना?
2: मेरा खानदान अली को मानने वाला है, मगर मेरे और मौला के दरमियान वही निस्बत है जो अब्द और परवरदिगार के दरमियान है। मुहाल है मैं ऐसा करूं।
1: उसी अली की कसम जिसे खुदा की जगह पर रख दिया गया है, अगर इस शर्त को पूरा नहीं करोगे, इस शादी की हसरत तुम्हारे दिल में बाकी रह जाएगी। इस शादी की चमक धमक को मत देखो। अलग चमकते ही सब बर्बाद कर दूंगा।
0: सलाम।
1: वालेकुम सलाम। माजिद, माजिद।
3: जुबैदा, हमारे लिए शरबत लाओ।
0: जी जरूर।

0: तुम्हारे और बाबा के बीच कोई शर्त थी और मुझे नहीं बताया।
1: तुम्हारे बाबा की शर्त अली को लानत करने की नहीं थी।
0: तब क्यों चुप थे और कुछ क्यों नहीं बोले?
1: गलत आदमी को चुना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मौला अली को गलत कहना मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने जो कहा इसे ऐसी कपकपी मुझ में तारी हो गई है जो मर्दों की शान के खिलाफ है।
0: जब शादी के लिए राजी हुए थे उस वक्त मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में थी या नहीं? अगर नहीं तो अब इस तरह खौफ का चेहरे पर आना किसी मर्द या आशिक के लिए मुनासिब नहीं। और अगर मुझ पर रहम खाकर खुदा के लिए शादी पर राजी हुए हो तो इसी बात का गुमान था जो अभी हो रहा है। तकिया कर लो, अली के जाने

रहने वाले कबीले की एक लड़की की गैरत नाइला की आस है। उनके दरमियान जिन्हें तुमने देख ही लिया है कैसे मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे अकेला मत छोड़ना। हेला, पीछे हटोगे तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। तुम्हारे इस दरवाजे से जाते ही कहानी पलट दूंगी, देख लेना। इससे पहले कि कोई और मेरी जान का दुश्मन बने, खुद ही अपनी जान दे दूंगी।

0: jeans auf mir. कोई जाने ना जाने मगर आप जानते हैं कि अगर मैं यहां हूं और इस शादी पर राजी हुआ हूं तो यह आपके लिए था। अगर अपने खानदान को पीछे छोड़कर आपकी दुश्मन की बेटी को बदबख्ती और मौत से निकालने चला हूं तो आपकी रिजायत के लिए था। क्यों मेरा हाथ नहीं थाम रहे? मुश्किल को शाही कीजिए आका, मुझे अकेला ना छोड़िए।
1: तलवार के रक्स का वक्त आ गया।

0: आप ये लीजिए बाबा, हमारी दुकान का भी ध्यान रखिएगा। चलता हूं।
1: जरूर।
2: एक बार फिर से कहो, क्या बोला उसने?
3: वही एक जुमला, डरी और सहमी हुई थी, कह रही थी आपकी बहन है।
2: कोई उसके साथ नहीं था? कोई कनीज, खुदामा?
3: कोई भी नहीं।

तय पाया कि जनाब औहद के कमरे में आपका इंतजार करें, तशरीफ लाइए। आइए।

0: मुझे तुमने बीच में क्यों रखा? ससुर और बहू के झगड़े में मुझसे क्या मतलब?
1: बेहतरों का मुंह बंद रखो।
0: खुदा की लानत हो इस खानदान पर।
1: तुम काम कर चुकी हो, उजरत भी ले चुकी हो, अब तुम जा सकती हो।
0: अपना हाथ हटाओ। मेरा काम लोगों की जान लेना नहीं, ये तुम और तुम्हारे खानदान का काम है।

तुम्हें खुदा का शुक्र करना चाहिए दोनों तुम्हारे बच्चे अब तक जिंदा हैं। अब इधर दिखना भी मत। निकलो।

मैं हिलाल बिन हनीफ आज रात अलवियों के साथ अपनी बारात का ऐलान करता हूं।

0: बेटा बोलो।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खुदा की लानत हो।
0: वाह वाह, महफिल की असल मलिका भी आ गई। खुशामदीद हिलाल की मां।

मुबारक हो। जो भी है खुदा का हुक्म और उसके रसूल की सुन्नत है। मुबारक हो इंशाल्लाह। हिलाल की माँ की तरफ से तोहफा दुल्हन के लिए, ताकि उसके खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अब और आपकी खुशियों के दरमियान नहीं आऊंगी। जनाब अहद, अभी तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर ये जान लीजिए कि सामिया ने इस घर को बेटा नहीं दिया, बल्कि इस घर से बेटी ली है।

0: तुम्हारे बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: यकीन मानो तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। जो भी किया बनी उमैया की रस्मों में से था।
0: कौन सा यह निकाह उसूलों के साथ हुआ था जो रस्मों को निभाया गया?
1: सही कह रहे हो, किसी ऐसे पे लानत करना जिसे जिंदगी भर चाह है आसान नहीं है, वो भी शादी के बीच। ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारी माँ कुछ ऐसा करेंगी। इज्जत रख ली। हिलान,
0: हाँ।
1: जिस माँ को मैंने देखा, कतई रहम तो बहुत दूर की बात है, बल्कि तमाम मसाइल को कबूल कर लिया ताकि तुम्हारी तरफ से कहीं कोई कमी ना रह जाए। चलो कल तुम्हारे घर चलते हैं और शुक्रिया के बहाने तुम्हारी माँ से भी मिल लेते हैं, ठीक है?

0: कहाँ चलती है? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि टूटे हुए दांतों से खाने का मजा नहीं लिया जाता।
1: पहचाना नहीं तुम्हें।
0: खाक हो तुम पर हिलाल, बहुत खराब सौदा करने लगे हो। तीन बेचकर बीवी लाए हो।
1: अली का दम भरते और मेरी नामोस का रास्ता रोकते हो।
0: तुम्हारी बीवी के रास्ते में नहीं आ रहा है, रास्ता खुला है, चले जाओ तुम।
1: किनारे।
2: पहले तुम जाओ, अगर सब ठीक रहा तो मुझे बुला लेना।

0: सलाम।
1: सलाम।
2: कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों रो रही हो?
1: कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, जैसे मैं इंसान हुई नहीं, मुझे रुलाते रहते। आप कौन है?
2: मैं मेहमान हूँ।
1: मेहमान?
2: हिलाल की बीवी, पहचानती हो उसे?
1: तो इसका मतलब कि आप ही दुल्हन है। कितनी खूबसूरत है आप। मैंने अम्मी से बात की है, बड़े होकर मैं भी ना शादी करूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। मगर मामू से नाराज हूँ मैं, अपनी शादी की हमें कोई खबर ही नहीं थी, मगर आपसे नहीं।
2: सलाम।
3: सलाम। यहाँ क्यों, अंदर आओ। आओ आओ, खुशामदीद प्यारी दुल्हन, तशरीफ लाओ।
2: मैं माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए।
3: कैसी मुजाहिमत, कल से तुम भी इस घर के लोगों में से हो। तशरीफ लाओ बहू, अंदर चलो।
4: अशहदु अल्ला इलाहा
3: इल्लल्लाह, ये आप ही का घर है मेरी बहू, तशरीफ लाइए।
4: अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
3: तशरीफ लाइए।
4: सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अशहदु अन्ना अलैया वलीउल्लाह, व अशहदु अन्ना अलैया हुज्जतुल्लाह।

0: खुदा तुम्हें दुगनी ताकत अता करे, नवासे को संभालना, बहू को संभालना।
1: खुदा का शुक्र है कि रहमत का दरवाजा इस घर पे खुल गया।
0: खुदा का शुक्र है।
2: हिलाल, हिलाल, भाई तुम्हें खुदा की कसम, उस देव से दूर रहो जो किसी को भी मारने से नहीं डरता।
0: वो क्या है?
2: तलमा, रहीम की बीवी को मार दिया।
3: किसने मारा, सही से बताओ, पता तो चले।
2: कल हमल के दर्द की वजह से शादी से नहीं निकली थी, बालिया का तिजारत खाने तक पीछा किया। वहाँ अपने कानों से सुना, वो कह रही थी कि तलमा को मार दिया।
1: क्यों ये बच्चा रो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अपनी दुल्हन को अकेला छोड़ आए हो और यहाँ जोर जोर से कानाफूसी कर रहे हो? ये अदब के खिलाफ है, न जाने क्या सोचेगी।